मिनीवेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है आज की पहली सभा। इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन।

0: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा

0: ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। विचार मंथन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। प्रस्तुत है वंदना। देश का मान हमारे हर एक कर्तव्य से बढ़ता है जो उसके नागरिक होने के साथ हमें मिलते हैं और हम उन्हें निभाते हैं। हमारी देश के प्रति चाह, समर्पण, कोशिश, फर्ज हमारे देश को चहुं ओर ख्याति दिलाते हैं, अग्रसर रखते हैं, अग्रणीय रखते हैं। आइए वंदना करें अपने देश की।

परमात्मा की उस्तत हर एक जन करता है। कोई अपने स्वार्थ के लिए, कोई मनोकामना के लिए, कोई शांति के लिए और कोई निश्चल प्रेम के लिए। कारण कोई भी हो, भक्ति हर हाल में हमें स्थिर रखती है, सुकून देती है।

परोपकार, दया, करुणा, समर्पण, दान, ये सभी दैवीय गुण हैं और ये दैवीय गुण हमें भक्ति भाव की ओर अग्रसर करते हैं। भक्ति की लौ हमारे अंदर या यूं कहें आत्मिक तौर पर प्रखर करते हैं।

कई नाम उस सर्वशक्तिमान के जो निर्भय है, निर्वैर है, निराकार है, पर हमने उस करतार के कई नाम रखे, कई विविध प्रयोजन रखे, रास्ता एक ही।

0: श्रोता सुन रहे थे भक्तिपूर्ण वंदना। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। सुनिए प्रकाश किरण। आज सुनिए सत्पुरुषों की संगति का महत्व। वाचक स्वर श्री दामोदर शास्त्री।
1: दुनिया में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई अपने सत्कर्मों व सद्गुणों के कारण प्रतिष्ठा व सम्मान अर्जित करते हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग अपने दुष्कर्मों के कारण निंदा व अपयश के भागी होते हैं। सद्गुणों व सत्पुरुषों का सभी जगह आदर होता है और दुर्गुणों व दुर्जनों की सब जगह निंदा। सत्पुरुषों के संसर्ग में आकर जहाँ व्यक्ति को मन की शांति मिलती है, वहाँ दुर्जनों के संसर्ग से अशांति। इसीलिए सत्पुरुषों की संगति का महत्व शास्त्रों में जगह जगह गाया गया है। महान नीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है, संसार कटुवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितंच सुस्वादु संगति सुजने जने। इस संसार रूपी वृक्ष में सभी फल कड़वे होते हैं, किंतु दो ही फल उसमें ऐसे लगते हैं जो अमृत जैसे मीठे होते हैं। एक तो मीठी वाणी और दूसरा सत्पुरुषों की संगति। वास्तव में सत्पुरुष चलते फिरते सद्ज्ञान की पाठशाला हैं। उनके संसर्ग में जो भी आता है उसमें सद्गुणों का विकास स्वतः प्रारंभ हो जाता है। जैनाचार्य रविशेन ने पद्म पुराण में सत्संगति का महात्म्य इस प्रकार बताया है, साधो संगमनालोके न किंचित दुर्लभम भवेत बहुजन्मसु न प्राप्ता बोधिर्येनाधिगम्यते। अर्थात सत्पुरुषों की संगति से दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त न हो सके, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति को भी सत्पुरुषों की संगति से सज्ञान का प्रकाश मिलता है, जिसके आधार पर वह सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। महामनीषी भर्तृहरि ने भी बड़े ही सुंदर ढंग से सत्संगति के लाभों पर इस प्रकार प्रकाश डाला है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति से मनुष्य की बुद्धि प्रखर होती है, सत्य बोलने का गुण विकसित होता है, पाप से दूर रहने का भाव दृढ़ होता है, कीर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और मन की प्रसन्नता सदा बनी रहती है। भला बताओ ऐसा कौन सा लाभ बचा है जो सत्संगति से प्राप्त नहीं होता। दुर्जनों की संगति के बारे में महान नीतिज्ञ भर्तृहरि ने कहा, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन् मणिना भूषित सर्पः किमसौ न भयंकरः। सर्प के मस्तक पर बहुमूल्य मणि भी होती है तब भी लोग उससे भय खाते हैं और उसके समीप नहीं जाते। उसी प्रकार कोई व्यक्ति विद्वान होते हुए भी यदि दुर्जन हो तो उसकी संगति से लोग दूर रहते हैं और दूर रहना भी चाहिए। महाभारत में महात्मा विदुर जी ने दुर्जन संगति से होने वाली हानि के विषय में अपनी विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं, असंत्यागात पाप कृताम अपापान तुल्यो दंड स्पृशते मिश्र भावात शुष्केणार्द्रम दह्यते मिश्र भावात तस्मात पापै सह संधिम न कुर्यात। जैसे सूखी लकड़ी के साथ गीला ईंधन भी जल जाता है, वैसे ही पापी दुर्जनों की संगति से महात्मा सज्जनों को भी दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। इसीलिए दुर्जनों के साथ मेल जोल बढ़ाना उचित नहीं। दुर्जनों और सज्जनों की पहचान हम कैसे करें, इस संबंध में चाणक्य ने एक सूत्र बताया है, मनस्यन्यद वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। अर्थात दुर्जन की पहचान यह है कि मन में कुछ होता है और वाणी में और कर्म में कुछ और। सज्जन व महात्मा पुरुषों के मन वाणी कर्म में एकता होती है, वे जो सोचते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं।
0: प्रकाश किरण में आज आपने सुना सत्पुरुषों की संगति का महत्व। वाचक स्वर श्री दामोदर शास्त्री का। मीडियम वेव 374.5 यानी 800 kHz पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। सुनिए श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार श्रीकांत पारगांवकर और वाणी जयराम।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार श्रीकांत पारगांवकर और वाणी जयराम। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कृषि सामयिकी में आज जानकारी, पान की फसल के लिए सुझाव।
1: पान की बेलों में इस समय तक वृद्धि प्रारंभ हो चुकी होगी और बेलें लगभग 15 सेंटीमीटर लंबाई तक बढ़ चुकी होंगी, इसलिए उनको सहारा देना बहुत जरूरी है। इसके लिए बांस की पतली गिमची या सनई गड़ाकर उसमें कांस की सहायता से बेलों को 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर तक बांध दीजिए, जिससे बेल उनके सहारे ऊपर की तरफ बढ़ती जाए। जैसे जैसे बेल ऊपर चढ़ती जाए, इसको वैसे वैसे किमची की सहायता से बांधते जाएं। जो बेलें मार्च माह में रोपण की गई थी, वे अब लगभग 2 से 2.5 मीटर तक लंबी हो गई होंगी। इस फसल में 200 किलोग्राम नत्रजन, 100 किलोग्राम स्फुरो, 100 किलोग्राम पोटाश की मात्रा दी जाना चाहिए, जिसमें 100 किलोग्राम नत्रजन यूरिया के द्वारा दी जा सकती है। शेष 100 किलो मात्रा जो है नत्रजन की, वो सरसों या तिल या अलसी की खली के द्वारा दी जाती है। इस खली का घोल बनाना पड़ता है, फिर दे सकते हैं। स्फुरो पोटाश की मात्रा पारी में पान की बेलों के किनारे डालते हैं। डालने के पहले 15 सेंटीमीटर की नाली बना ली जाती है और नाली में स्फुरो पोटाश की मात्रा डालकर उसे मिट्टी से ढक देते हैं। नत्रजन की मात्रा को 8 या 10 बराबर भागों में बांट देते हैं और बरसात में 20 दिन के अंतर से और बाकी समय में लगभग 1 माह के अंतर से इसको देना चाहिए। इसको देने से भरपूर सिंचाई करना जरूरी होता है। यदि पानी गिर जाता है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। नत्रजन की शेष मात्रा देने के लिए खली की 2000 से 2500 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, जो एक वर्ष में 1 हेक्टेयर के लिए दी जाती है। खली का घोल बनाने के लिए खली को मिट्टी के बर्तन या नांद में डालकर उसमें पानी भर देते हैं और उसे सड़ने देते हैं। उसमें हाथों से अच्छी तरह से मसल कर मिलाते जाते हैं और अवशेष या गुच्छों को तोड़कर अलग करते हैं और कचरा बाहर निकाल देते हैं। खली लगभग 7

0: से 8 दिन में सड़ जाती है। खली का पतला घोल बनाकर बेल के पास जमीन में डालते हैं। खली की मात्रा को घोल बनाकर 20 से 25 दिन के अंतर में 3-4 बार डालना चाहिए। पान की नई रोपण को दिन में 2 बार हल्की सिंचाई देना चाहिए। वैसे यदि वर्षा के मौसम में पानी आ जाता है तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु इसमें एक बात और याद रखनी है कि पानी भरा नहीं होना चाहिए। मेड़ों में जहाँ पर बेलने की जड़ें रहती हैं, वर्ष में 2 बार बाहर से लाई गई मिट्टी डाली जाती है। इसमें मिट्टी डालने का कार्य लगातार किया जाता है। अधिकतर तालाब की मिट्टी का प्रयोग इसके लिए होता है। मिट्टी चढ़ाने से बेलों में अधिक जड़ें आती हैं और बेलों की बाड़ अच्छी होती है। साथ में पान की बेलें स्वस्थ और मजबूत भी होती हैं। अब जब ये समय आएगा बरसात का, तो इसमें प्रमुख रूप से पद और पर्ण गलन, साथ ही जीवाणु जनित रोग का प्रकोप होने लगता है। पर्ण गलन रोग में पत्ती पर हल्के भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं और बाद में बड़े होकर पत्तियों को सड़ा देते हैं, सुखा देते हैं। मुख्य तना भी जमीन के पास से सड़ने लगता है और सूख जाता है। प्रभावित बेलें आसानी से ऊपर खींची जा सकती हैं। यदि बेलों को आप चीर के देखेंगे तो अंदर काली धारी दिखाई देगी। जीवाणु जनित रोग में पत्तियों और तनों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि चारों ओर से पीले रंग से घिरे होते हैं। एक दूसरे से मिलकर ये बड़ा धब्बा बनाते हैं। प्रभावित पत्तियां गिर जाती हैं, जड़ों पर लंबाई में काले धब्बे बनते हैं। इस रोग का प्रसार जो होता है वो ग्रसित बेलों से, जमीन में रोगित अवशेषों से और हवा द्वारा होता है। इन रोगों से बचाव के लिए वर्षा के पहले 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव कर दें। इसके 1 माह के बाद ट्राइकोडर्मा नामक जो जैव नियंत्रक आता है, इसको भी पौधों की जड़ों के पास डाल दें। इसके 1 माह के बाद फिर से 1% बोर्डो मिश्रण का घोल छिड़क दें। यह प्रक्रिया बरसात के समय 4-5 बार करें। इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा जो होती है, इसका 250 ppm घोल का छिड़काव करना चाहिए। 250 ppm मात्रा के लिए 6 ग्राम दवा को 24 लीटर में पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें।
1: कृषि सामयिकी में श्रोता सुन रहे थे पान की फसल के लिए सुझाव। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। समय हो चला है कार्यक्रम विवरण का। हम आपको इस सभा के शेष और दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा रहे हैं। आज शाम 6:30 से सुनिएगा ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल, जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे। विश्व दर्पण सुबह 10:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही हम अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी भोपाल से रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों में सिंधियत जी सुरहान सुबह 9:30 पर और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम दिन के 10:58 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही आप सुन सकते हैं दिन के 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान।

स्थानीय कार्यक्रमों में सुबह 7:20 पर हमारा नियमित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा भेंटवार्ता, साइबर अपराध, विशेषज्ञ श्री संपत उपाध्याय, भारतीय पुलिस सेवा पुलिस अधीक्षक जबलपुर, और आपसे भेंट करेंगे प्रशांत परमार। साथ ही इस कार्यक्रम में चर्चा और संगीतिका संडे भी शामिल है। समय याद रखिए 7:20 पर। गुड मॉर्निंग जबलपुर। फिल्म संगीत 8:30 पर और 5:33 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा 10:20 पर।

सुबह 9 बजे सुनिएगा लोक रसधार। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सत्रुपा चौधरी और शंकरलाल पटेल के गाए बुंदेली लोकगीत। सुबह 10:05 पर वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। शाम 6:10 पर फिल्मी देशभक्ति गीत सुनिएगा। श्रोता सुन रहे थे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, हम आपको बता दें, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को यानी अभी सुबह 6:15 से 7:35 तक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले मुख्य योग उत्सवों के पंजीकरण के लिए योग संगम पोर्टल शुरू हो चुका है। सभी नागरिक अपने निजी मोबाइल या डिवाइस से इस मुहिम में अलग अलग शामिल हों और स्वस्थ भारत के इस राष्ट्रीय संकल्प को सफल बनाएं। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्तरूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यन्त शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थम् उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयान त्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीम् उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिमतापनप्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोरजलवायुपरिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिकचन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्धसमापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथमस्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं 7 क्रीडकपुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर

पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रूपए अंतरित करेंगे। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए प्रदेश के 30 जिलों के 283 केंद्रों पर व्यापक तैयारियां। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से तापमान में आई गिरावट, आज भी राज्य में अनेक जगहों पर आंधी और बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में आज फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। वे यहां पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: इसके पूर्व नीस पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री

0: नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत सत्कार अविस्मरणीय था। उन्होंने कहा कि भारत से मिलो दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। इसमें 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इनमें 122 करोड़ रुपए की लागत के 28 कार्यों का भूमि पूजन और करीब 69 करोड़ रुपए की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण होगा। वहीं मुख्यमंत्री भोपाल में एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्टअप्स तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण भी करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन कल एक सर्वसम्मत इंदौर घोषणा के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु सहनीय खेती, कृषि, व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनिश्चितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की यह बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के अंतिम दिन कल मेघदूत उपवन में विकसित ब्रिक्स वाटिका में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने फलदार पौधे रोपकर हरित विकास का संकल्प भी दोहराया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है।
2: हमारी सरकार भर्ती में भी प्रोत्साहन दे रही है। सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है। बीते समय से लगातार 22,000 पदों की भर्ती का अभियान चला है। हर साल नई भर्ती निकालने के लिए हम सारा प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से पुलिस के स्वीकृत पदों पर कोई स्थिति वेकेंट न रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा।
0: मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात है देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भोपाल में कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।

उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा भी लागू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के

गया कि प्रदेश के 30 जिलों में नीट परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर से बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। कल राजधानी भोपाल में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। माही लामा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 15 से 20 जून तक चीन में आयोजित की जाएगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के मैच के साथ करेगा। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। वहीं शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हराया। वहीं भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और अफगानिस्तान का दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने कल शासकीय अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से संवाद किया। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कल आयोजित की गई। बाल संप्रेषण गृह झाबुआ में बच्चों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और भारत ज्ञान मंडपम मिशन के अंतर्गत कल आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित दिगंबर जैन मंदिर के संग्रहित लगभग 30 पांडुलिपियों का सर्वे कर उन्हें चिन्हांकित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। समय है गुड मॉर्निंग जबलपुर का।

आयो प्रभात, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल हो, यही दुआ है हमारी। नींद की चादर चीर कर बाहर निकल आए होंगे अब तो आप सभी। बहुत सी रोज़मर्रा की बातें, काम और फ़र्ज़ निपटाने होंगे अभी। ज़िंदगी सुबह जो देती है, प्रभात जो देती है अपने जीवन को सही रास्तों पर ले चलने के लिए, और फिर रात देती है सही काम के बाद सुकून भरी नींद देने के लिए। तो वही ज़रा सी गलती भूल चूक अंधकार में डुबो देती है और फिर हमें नींद नहीं आती। हमारे हाथ में है सब अच्छा। सुबह अपने ईश्वर का धन्यवाद कर, उस सूरज की किरणों का धन्यवाद कर, सत्कर्म करते हुए अपने कई फर्ज निभाते हुए चल पड़िए। रास्ते अपने आप बनेंगे, उजाले साथ होंगे, बाहर आपकी बाहें होंगी और सुकून आपके इर्द गिर्द होगा, फिर बाकी संगीत ही संगीत की लहरियां होंगी।

0: श्रोताओं, विभिन्न जानकारियां हम आपसे साझा करते हैं, दिन त्योहार के अवसरों पर बातें करते हैं। कभी न कभी कोई न कोई बात तो हमारे लिए निश्चित ही लाभकारी साबित होती है। बस ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो हमें ध्यान से सुननी जरूरी है। आइए हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है साइबर अपराध। विशेषज्ञ श्री संपत उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक जबलपुर, और आपसे भेंट कर रहे हैं प्रशांत परमार।
1: नमस्कार मित्रों। मित्रों, देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं और इसी वजह से अलग अलग प्रकार के अपराधी भी समाज में पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं। इन्हीं अपराधों के बीच में आज के डिजिटल युग में एक अन्य अपराध भी बहुत सामान्य रूप से देखने को मिल रहा है, जिसे हम साइबर अपराध या साइबर क्राइम कहते हैं। ये साइबर क्राइम क्या है, ये कैसे घटित होता है और पुलिस प्रशासन इससे कैसे निपटता है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है जबलपुर नगर के पुलिस अधीक्षक 2013 बैच के IPS अधिकारी श्री संपत उपाध्याय जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से साइबर अपराध हैं जो इस समय सामान्य रूप से देखे जा रहे हैं, जिससे आम जनता जो है वो प्रभावित हो रही है।
2: साइबर क्राइम एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि अलग अलग तरीकों से होने वाले अपराधों को दिया जाता है। इसमें मुख्यतः कोई भी अपराध जिसमें मोबाइल का, इंटरनेट का उपयोग हुआ हो घटित करने में, उसको साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं। इसमें पुराने ट्रेडिशनल अपराधों से एक यह चीज़ अलग होता है कि जो अपराधी है वो आपके सामने नहीं होता और वो अपराध आपके साथ घटित कर देता है। अभी जो प्रचलन में अपराध देखने में आ रहे हैं उसमें OTP के माध्यम से फ्रॉड, UPI के माध्यम से फ्रॉड, आपके द्वारा मैसेज और ईमेल इत्यादि पे लिंक भेजते हैं उसके माध्यम से फ्रॉड, इसके अलावा लोन ऐप के माध्यम से फ्रॉड लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे काफ़ी बड़ी मात्रा में और बड़े वॉल्यूम के फ्रॉड हो रहे हैं, इसके अलावा ऑनलाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से भी कई तरह के अपराध अंजाम दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल कोई भी अपराध जिसमें इंटरनेट और मोबाइल इत्यादि के उपयोग से आपके साथ धोखाधड़ी की जा रही हो, आपको परेशान किया जा रहा हो, आपको बुलिंग किया जा रहा हो, वो सभी इसकी श्रेणी में आते हैं।
1: जी, जैसा कि साइबर क्राइम के बारे में कहा जाता है, ये एक वर्चुअल स्पेस में होने वाला क्राइम है, तो पुलिस प्रशासन के लिए साइबर अपराध किस प्रकार की चुनौती है और इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन किस प्रकार के नवाचार करता है, खासतौर पे जब हम जबलपुर की भी बात करें तो इसके बारे में भी बताइए।
2: साइबर अपराध का चैलेंज यही है कि जो अपराधी है वो हमारे आसपास नहीं होता। अगर बात करें जबलपुर में होने वाली घटनाओं के संदर्भ में तो ज़्यादातर केस में अपराधी हमारे जिले के बाहर, प्रदेश के बाहर और कई मामलों में देश के बाहर के रहते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती रहती है। साथ ही साथ आज के डिजिटल युग में ट्रांजैक्शन जो बैंक के हैं काफ़ी फास्ट हो गए हैं। जो भी अपराधी रहता है उस पैसे को अपने खाते में, म्यूल अकाउंट एक शब्द आता है जो किसी अन्य व्यक्ति का खाता उपयोग कर रहा होता है, तो उन खातों से कई खातों में पैसा होते हुए और कहीं फॉरेन के अकाउंट में चला जाता है। कई बार अलग अलग छोटे छोटे अमाउंट में देश के अलग अलग कोनों से विड्रॉ होता है, तो ये एक चैलेंज रहता है। साथ ही साथ डिजिटल काम करने वाली जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो अथवा टेलीग्राम हो या अन्य हो, ये सभी बाहर की कंपनियां हैं, तो हमको जब जानकारी इनसे चाहिए होता है तो उस समय जानकारी ये काफ़ी कई बार डिले देते हैं, कई जानकारियां नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी जांच प्रभावित होती है। अगला जो महत्वपूर्ण चैलेंज दूरी का है, कोई भी एक खाते से सपोज फ्रॉड हुआ, उसके खाते से कोई पैसा निकला और वो कश्मीर के अकाउंट में गया, वो पैसा तमिलनाडु के अकाउंट में गया, वो पैसा आसाम के अकाउंट में गया, तो एक ही फ्रॉड का पैसा देश के कोने कोने में चला जाता है। फिर वहाँ टीम जाती है, ढूंढती है, तो खाता ऐसे व्यक्ति का मिलता है जिसको पता ही नहीं है कि उसके नाम से खाता खुला है, या उसको एक नॉमिनल 1,000-2,000 की राशि दे के उसका डॉक्यूमेंट लेके किसी ने खाता खुलवा लिया है, फिर वहाँ से आगे अपने को ट्रेस करना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा ये चैलेंज रहता है, जिसमें जबलपुर पुलिस ने भी कामकाज शुरू किया है, इसमें साइबर सेल का विस्तार किया गया है। DSP रैंक के अधिकारी श्री अंजुल मिश्रा जी उसके प्रभारी हैं, वहाँ पे TI रैंक के अधिकारियों की पदस्थापना की है और कुल करीब 30-35 का स्टाफ है जो लगातार लगा हुआ है। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाया गया है।
1: जैसा कि आपने पूरा तंत्र हमें समझाया कि किस तरीके से साइबर सेल है वो काम करता है, कोई ऐसा प्रकरण, कोई ऐसा मामला साइबर अपराध से जुड़ा हुआ जो आप साझा करना चाहें?
2: अभी जो

0: जबलपुर की ही उदाहरण लिया जाए तो जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगी के मामले आए हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक पीड़ित थे, उनको इन्वेस्टमेंट का टिप्स मिला और बताया गया कि इस आप ऐप के माध्यम से पैसा लगाएं। उन्होंने उस ऐप के माध्यम से पैसा लगाया और वो पैसा उनके जो ऐप का मॉड्यूल था उसमें बढ़ता हुआ दिखता था। कुछ पैसा उनको वापस मिला जब उन्होंने माना, और इस तरह से वो अपने लोन लेके, इस इदारों से उधार लेके पैसा उसमें लगाते गए। वो राशि धीरे धीरे उनकी काफ़ी बड़ी, करोड़ों की राशि हो गई। फिर उन्होंने कुछ निकालना चाहा तो वो पैसा उनको मिलने से मना हो गया, तो फिर उनको एहसास हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। फिर उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर निकाले, सभी लोगों से बात करना चाहा जो भी उस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट के टिप्स ले रहे थे, तो उसमें पता चला कि ग्रुप में 125 लोग हैं और 124 लोग फ्रॉड वाले के ही नंबर थे, ये एकमात्र उसमें जेन्युइन व्यक्ति थे। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल तरीके जो फ्रॉडस्टर हैं वो अपनाते हैं। ऐसे ही एक और घटना मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति ने व्यक्ति से दोस्ती की और बताया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और हमारे पास बहुत सारा पैसा गिफ्ट है जो आपको देना चाहता हूँ, और कस्टम ने हमको पकड़ लिया है यहाँ दिल्ली में, उसको छुड़ाने के लिए हमको पैसा लगेगा, उनसे काफ़ी भारी मात्रा में ले लिए पैसा। तो इस तरह के घटनाएँ होती हैं और इसमें सावधानी रखना और बात करना, वेरीफाई करना, यही इसके बचाव का उपाय है।
1: जी जी, मैं ये जानना चाहूँगा हमारी श्रोताओं के लिए कि ऑनलाइन धोखाधड़ी जब होती है तो उसके बाद किसी एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए सबसे पहले?
0: जैसे ही आपका धोखाधड़ी का आपको पता चले, 1930 पे कॉल आपको करना चाहिए और वहाँ रिपोर्ट करना चाहिए। साथ साथ आपको अपना अकाउंट ब्लॉक कराना चाहिए। आप अगर साइबर सेल आ सकते हैं, जहाँ भी आप हैं वहाँ के साइबर सेल में जाइए, नहीं जा सकते तो नज़दीकी थाने में जाके आपको रिपोर्ट कराना चाहिए। इसमें जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे 1930 पे, पैसा होल्ड होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सावधानियाँ तुरंत आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे और भी कोई जानकारी आपके पास हो तो वो भी शेयर करना चाहिए।
1: यानी कि अगर कोई ऐसा अपराध आपके साथ घटित होता है तो 1930 सबसे पहला ये संपर्क है जिससे हमें अपनी जो धोखाधड़ी हुई उसकी शिकायत करनी चाहिए। सर, हम अक्सर ये देखते हैं अलग अलग तरीके के फ्रॉड जो ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं। पहले तो एक पैटर्न था जिसमें OTP के माध्यम से वो अपराध घटित करते थे, अब हम देख रहे हैं कि अब OTP की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये APK क्या चीज़ है? APK जिसमें OTP की भी ज़रूरत नहीं होती और सामने वाले के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा
0: जी
1: बताएं।
0: बिल्कुल, ये APK एक तरह का फाइल रहता है, और अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये एक बग है या आपका वायरस है। जो फ्रॉडस्टर है वो हमारे मोबाइल में मैसेज के माध्यम से अथवा मेल के माध्यम से किसी भी तरीके से हमारे मोबाइल में भेजता है, और जैसे ही हम उसका लिंक टच करते हैं या जो भी उसका मैसेज टच करते हैं, वो फाइल हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है। फाइल डाउनलोड होते ही जो फ्रॉडस्टर है, अपराधी है, उसको हमारे मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है। अब उसको OTP मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चूँकि मोबाइल का पैरेलल एक्सेस उसको मिल चुका है। अच्छा। तो आपके जितने भी OTP मैसेज आते हैं वो उसको मिल जाएगा। आपका वो पासवर्ड बदल सकता है, आपके ऐप के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो मोटा मोटी ये समझें कि अगर APK फाइल आपके लोड हो गई है तो आपका मोबाइल का लगभग क्लोन कॉपी अथवा आपके मोबाइल का एक्सेस उसके पास हो जाता है, इसलिए बिना OTP के भी उसमें फ्रॉड हो जाता है।
1: जी सर, हम ये देख रहे हैं कि अभी कुछ वर्षों से और ख़ासतौर पर कोरोना के बाद से जो विद्यार्थी वर्ग है या जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकता बन गया है मोबाइल। अपराधी जो विद्यार्थी और युवाओं के साथ फ्रॉड करते हैं, कैसे वो उसके चपेट में आते हैं, क्या तरीका है, कैसे उससे बचा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: कोई भी बड़ी नई तकनीक आती है तो उसका फ़ायदा नुकसान कई सारे होते हैं। निश्चय ही मोबाइल इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं और अध्ययन करने में बहुत उसकी मदद मिलती है, परंतु साथ ही साथ जो निगेटिव उसका तत्व है कि बहुत सारे लोग जो आपके बच्चे के पास, युवाओं के पास नहीं आ पाते, मोबाइल के माध्यम से वो उनसे जुड़ जाते हैं। सबसे कॉमन उनसे चीटिंग का तरीका या उनको भावनात्मक रूप से आहत करने का तरीका इम्पर्सोनेशन है। व्यक्ति कोई भी XYZ है और अपना कोई अलग नाम से सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट वगैरह बना के सक्रिय हो जाता है। कई बार युवतियों से खासतौर पर दोस्ती करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बाद में वो धोखाधड़ी और भावात्मक रूप से काफ़ी उसमें चोट और अपराध की श्रेणी तक भी वो घटनाएं पहुंचती हैं। जो हमारा युवा वर्ग है, कई बार मोबाइल पे जो भी जानकारियां मिलती हैं, जो वर्चुअल उनके दोस्त होते हैं, सोशल मीडिया के दोस्त होते हैं, उनको वास्तविक मान बैठते हैं, जबकि चांसेज हैं कि वो वास्तविक हो, चांसेज हैं कि वो पूरा ही फेक हो। तो इस चीज़ पर हमारे युवाओं को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कि आपका जो वर्चुअल व्यक्ति दिखता है सोशल मीडिया पे या अन्य वेबसाइटों पे, वो सही नहीं भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। इसके अलावा जो युवा काफ़ी आजकल ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, वैसी स्थिति में भी गलत वेबसाइट इत्यादि मिलते जुलते नाम की हो जाती है। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपयोग करते हैं, उसमें भी इंटरनेट बैंकिंग में कई सारे केस आए हैं।

0: बैंक के मिलते जुलते नाम के वेबसाइट बनी है और उससे वो शूटिंग हुई है। तो इसमें युवाओं को सावधान रहने की ज़रूरत है और सोशल मीडिया का उपयोग करते समय, यूपीआई का, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते समय उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर जो फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, खासतौर पर बच्चियाँ जो डालती हैं, और उसके संबंध में भी सावधान रहने की ज़रूरत है।
1: जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं या फिर, उनको इस अपराध से बचाने के लिए अभिभावकों को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए उन्हें?
0: प्रत्येक अभिभावक को जो हमारा अनुभव बताता है कि बच्चे की ऑनलाइन गतिविधि क्या है, अगर नाबालिग बच्चा है विशेष तौर पे, तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। ज़्यादातर मोबाइल और जो सिस्टम है उनमें चाइल्ड लॉक बना रहता है कि बच्चों को किस चीज़ का एक्सेस देना है, नहीं देना है। इसके अलावा उनका अन्य जो गतिविधि है उसकी भी रिपोर्ट रहती है। और सबसे अच्छी बात कि अपने बच्चों से बातचीत करना, अगर आप बच्चे से एक दोस्त के रूप में पूरी बात खुल के बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी हो सकती हैं, बेकार हो सकती हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हो सकता है ऑनलाइन कोई फ़ोन करके उसको डरा धमका रहा हो सकता हो AI से उसकी कोई फ़ोटो गलत तरीके से बना लिया हो कोई व्यक्ति और उसको परेशान कर रहा हो। तो इन सब चीज़ों के लिहाज से क्या उसकी गतिविधि चल रही है उस पर नज़र रखना और उनसे लगातार बातचीत करना ज़रूरी है। उनको एक कम्फर्टेबल माहौल देना जरूरी है जहाँ कोई समस्या हो तो बता सके। साथ ही साथ जैसे ही उनकी उम्र होती है, इंटरनेट मोबाइल इत्यादि और कंप्यूटर का वो अलग से उपयोग करना शुरू करते हैं, उनको इनके निगेटिव जो चीज़ें हैं या जो आपराधिक तत्व उन पर सक्रिय हैं उनके बारे में भी उनको बताना, अवगत कराना और काउंसिलिंग करना आवश्यक है।
1: जी सर, एक टर्म आपने इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक पे आधारित जो अपराध हैं ये बहुत आजकल हम देख रहे हैं, इससे पुलिस कैसे निपटती है, क्या उनकी तैयारी होती है?
0: डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है अभी के समय में। अभी भी ज़्यादातर लोग, खासतौर पे गांव देहात के लोग और भी अपने बुजुर्ग लोग, मान के चलते हैं कि जो चीज़ फ़ोटो में दिख रही है वो सही होगी, वो झूठी नहीं हो सकती। जो चीज़ कान में सुनाई दे रही है साक्षात, तो वो गलत नहीं हो सकती। आजकल AI के माध्यम से किसी फेमस सिंगर के आवाज़ में लोग गाना बना सकते हैं, किसी का वीडियो भी किसी तरीके से बना सकते हैं, फ़ोटो किसी तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चैलेंजिंग हमारे लिए ज़रूर रहता है, कोई भी ऐसी शिकवा शिकायत आती है तो हम उसको हैंडल करें, अटेंड करें। साथ ही साथ लोगों को भी बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पास भी कोई सूचना आती है जो को लगता है कि हमको सामान्यतः विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त है, कभी आपसे ज़िंदगी में पैसा नहीं मांगा और वो पैसा मांग रहा है, तो इसमें सोचने की ज़रूरत है कि यार उसी का अकाउंट है, या ऐसा तो नहीं कि उसकी फ़ोटो लगा के DP लगा के किसी अन्य ने अकाउंट बना लिया, उसके नाम पे पैसा मांग रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है फेसबुक व्हाट्सएप पे, आपके मित्र की दोस्त की फ़ोटो लगा के लोग पैसे मांगने लगते हैं। ऐसे ही बहुत सारी गतिविधियाँ आपको दिख सकती, इंटरनेट पर कोई व्यक्ति की ऐसी फ़ोटो दिख रही है जो आपको लगता है कि सामान्यतः उसकी नहीं हो सकती है, तो उसको और गहराई से अपने को देखने की ज़रूरत है। तो पहला तो सावधानी यही है, और सबसे बड़ी सावधानी यही है कि हमको आपको सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ सुनाई दे रही है, जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो हमारे सामने है, वो सही नहीं भी हो सकती है, ये मानना ज़रूरी है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कामकाज के क्षेत्र में भी। और अगर कहीं कोई डाउट हो तो उसको वेरीफाई कराना ज़रूरी है।
1: जी, साइबर अपराधी हम देख रहे हैं वर्चुअल स्पेस में ये अपराध घटित करते हैं, क्या इनको ट्रेस करना संभव है और ये कितना कठिन कार्य है?
0: साइबर अपराधी बिल्कुल ट्रेस हो सकते हैं, जैसा हमारी पूर्व की भी चर्चा में छोटी बात आई थी, जो ट्रेस करने के तरीके हैं पुलिस के पास, बाकी संसाधन केंद्र सरकार भी उसमें काम कर रही है, करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें चैलेंज फैलाव का है। भौगोलिक रूप से किसी अन्य देश से सर्वर संचालित हो रहे हैं और अपराध यहाँ घटित हो रहा है। जो आरोपी है वो देश के किसी अन्य कोने में 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और उसने फ्रॉड 25,000 रुपये का किसी का किया, वहाँ जो व्यक्ति का फ्रॉड हुआ उसके 25,000 बहुत बड़ी राशि है, और आपकी टीम जाती है उन जगहों पे चेक करने, वो समय रिसोर्स लगता है, वो कहीं ज़्यादा बड़ा लगता है। फिर इसके अलावा जो VPN का सिस्टम आजकल है, VPN में बहुत सारी चीज़ें हाइड कर लेते हैं लोग, आपको जो फॉरेन मल्टीनेशनल है उनका भी मैंने चैलेंज बताया कि कई बार जानकारी आने में लैग होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसको लेके काफ़ी संवेदनशील हैं, और I4C हुआ, साइबर स्टेट का हुआ, जिलों के साइबर टीमें हुई, लगातार इनका स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है, और बहुत हाई प्रोफाइल मामलों में लोगों की अरेस्टिंग हुई है, न केवल मध्य प्रदेश पुलिस ने बाकी दूसरे राज्यों से भी हुई है। तो सभी लोग लगातार लगे हुए हैं और उम्मीद है कि इसमें सबके संयुक्त प्रयास और लोगों के सावधानी से नियंत्रण आएगा।
1: जी सर, चलते चलते क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: भय और लालच दो ही कारण हैं साइबर अपराध में फंसने के, सामान्यतः महत्वपूर्ण यही दो कारण हैं। इसमें भय वह कारण है जिसमें आपको डरा धमका के साइबर बुलिंग के माध्यम से आपके गलत तरीके से फोटो वीडियो इत्यादि बता के

0: आपको लोग कहते हैं कि आप पैसा दो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये फ़ोटो शेयर कर दूंगा। एक डिजिटल अरेस्ट की भी बात आती है जिसमें कहते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस का हूँ, मैं बॉम्बे स्पेशल सेल का हूँ, कस्टम का हूँ, सीबीआई का हूँ, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर गलत गतिविधि में उपयोग हुआ है, आप इतना पैसा यहाँ पहुँचाओ नहीं तो आप जेल चले जाओगे।
1: जी।
0: तो ये डरा के धमका के लोगों का प्रयास करते हैं। दूसरा लालच का है, जो इन्वेस्टमेंट वाली बात मैंने कही थी कि लोग अधिक रिटर्न के लालच में फंस जाते हैं और गलत जगह पे बिना वेरीफाई किए पैसा लगाते हैं, वहाँ उनका पैसा डूब जाता है। तो ये दो मनोभाव हैं और इंसान में ये जब से इंसान का जीवन रहा है तब से रहा है। हर इंसान को भय होता है, हर इंसान को लालच होता है सामान्यतः। तो इन दो मनोभावों पे नियंत्रण करने की ज़रूरत है, जो कि हमारी सावधानी से होगा, जागरूकता से होगा। ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो संवेदनशील हैं इसमें, जिनके रिटायरमेंट का पैसा उनके पास है और अपने जबलपुर में ही 4-5 केस आए जहाँ रिटायर्ड लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग लगा दी। बच्चों बहुत संवेदनशील हैं क्योंकि देश दुनिया चीज़ों के बारे में उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, उनको समझाने और सावधानी रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर कोई घटना होती है तो उसको हमको आत्मग्लानि या शर्म नहीं करना है, हमको तत्काल अपना जो भी व्यक्ति है जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं उसको हम बताएं। और जो 3 स्थान बताए गए, आपका 1930 पे कॉल करना है, साइबर सेल में रिपोर्ट करना है, थाने पर रिपोर्ट करना है, उसको रिपोर्ट कराएं। हम सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से निश्चय ही हमको इसमें सफलता मिलेगी।
1: सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत सारी जानकारी साइबर अपराध और उनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में हमारे श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: श्रोता सुन रहे थे भेंट वार्ता साइबर अपराध, विशेषज्ञ श्री संपत उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक जबलपुर। भेंटकर्ता थे प्रशांत परमार।

0: नए चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
1: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले मुख्य योग उत्सवों के पंजीकरण के लिए योग संगम पोर्टल शुरू हो चुका है। सभी नागरिक अपने निजी मोबाइल या डिवाइस से इस मुहिम में अलग अलग शामिल हों और स्वस्थ भारत के इस राष्ट्रीय संकल्प को सफल बनाएं। दोस्तों, वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग के चार मुख्य प्रकार यानी चार मार्ग बताए गए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। हम सभी को ये पता है कि ये सभी योग हमें दीर्घायु बनाते हैं, हमें जीवन के मूल्यों को समझाते हैं, हम इन्हें अपना कर अपने लक्ष्य को पाते हैं, जीवन सफल और सुंदर बनाते हैं, कई परेशानियां आसानियों में तब्दील हो जाती हैं और हम आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक बन अपना जीवन सुचारू रूप से जीते हैं, है ना? तो आइए अब कुछ संगीत हो जाए।

दोस्तों, आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी विश्व रक्तदाता दिवस, जो हर साल इसी दिन यानी 14 जून को हम मनाते हैं। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्तदान महादान। हमने रक्त की कुछ बूंदें हमारी जो हैं, यदि किसी भी व्यक्ति में प्राण फूंक दे, इससे ज़्यादा सुकून किसी पल या कर्म में तो नहीं हो सकता। हम इस दिन को मनाते भी इसलिए हैं कि सुरक्षित रक्तदान के महत्व के बारे में हम सभी को जागरूक कर सकें, सभी में अवेयरनेस फैलाएं और निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करें, उनका धन्यवाद करें, उन्हें इस महान कार्य के लिए थैंक यू बोलें और अपने मन में ढेरों खुशियां समाएं। आइए अब यहाँ संगीत की धारा से ओतप्रोत हो जाएं।

0: श्रोता सुन रहे थे हमारा नियमित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर, अपनी रेडियो सखी सुखबीर तलवार संग। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, आपसे कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।
1: पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी

0: की है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
1: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार, सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों एंड जॉइंटली इनॉग्रेट भारत इनोवेट्स इवेंट इन नीस टुडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग लॉन्ग लाइफ मून लैंडर्स capable of surviving up to 200 days, says ISRO chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म ताल का ये गीत आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया, आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की आवाज़ है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फिल्म संगीत का ये अगला गीत, फिल्म का नाम प्रेम रोग। संतोष आनंद का लिखा ये गीत, जिसे गाया है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म तनु वर्स मनु से, शब्द रचना राजशेखर की, धुन कृष्णा की और आवाज़ लचेंबर हुसैनपुरी की।

श्रोताओं, ये फिल्म संगीत का आखिरी गीत था। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8:58 होने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से।

0: अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त अंतरित करेंगे, जिसके तहत 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेहतर नीति निर्माण के लिए बेहतर जन भागीदारी पर जोर देते हुए कहा है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में नीति निर्माण जन सामान्य के सुझावों के आधार पर ही किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भोपाल में कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। प्रदेश के 30 जिलों में नीट परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज खिलाड़ी माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। माही लामा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 9 बजे हैं और समय है लोक रसधार का। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए सतरूपा चौधरी और शंकरलाल पटेल के गाए चंद बुंदेली गीतों का। आइए सबसे पहले सुनते हैं सतरूपा चौधरी के गाए गीतों को।

लोक रसधार में श्रोता भी सुन रहे थे सतरूपा चौधरी और शंकरलाल पटेल के गाए बुंदेली लोकगीत। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

श्रोताओं, श्रीमान निदेशक महोदय आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र जबलपुर के लिए अज्ञात मृतक के वारसानों के तलाश हेतु प्रसारण बाबत ये एक सूचना है, निवेदन है कि जीआरपी थाना जबलपुर में पंजीकृत मर्ग क्रमांक 2426 धारा 194 बीएनएसएस में अज्ञात मृतक रमाशंकर पिता मधुरम उम्र 52 साल निवासी अज्ञात का दिनांक 9 जून 2026 को शासकीय अस्पताल विक्टोरिया में अज्ञात बीमारी होने से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसका हुलिया पूरी शरीर में सफेद दाग, सिर में चांद निकला हुआ, बाल रंगे हुए काले, दाढ़ी में मूछे हल्की बड़ी हुई, रंग सांवला, चेहरा सामान्य, बदन एकहरा, कद करीबन 5 फीट 7 इंच, मृतक के बदन पर सफेद कलर का शर्ट एवं नीले कलर का लोअर और सफेद सैंडो बनियान एवं कत्थई कलर का अंडरवियर पहना है। मृतक के वारसानों की तलाश पतारसी के लिए की गई, परंतु कोई पता नहीं चला। अज्ञात मृतक पुरुष का फोटो हुलिया बताते हुए 3 दिवस तक प्रसारण कराने की कृपा के चलते ये प्रसारण किया जा रहा है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, अब से कुछ ही पलों बाद यानी 9:30 पर आप सुनेंगे सिंधियत जी सुरहान कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से। वंदे मातरम गौरव गान की 1:30 सुनिएगा 10:05 पर। विश्व दर्पण हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे 10:10 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा 10:10 पर आप सुनेंगे। हम आपको बता दें, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम के अंतर्गत 2:30 पर सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। देशभक्ति फिल्मी गीत शाम 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे। हम आपको बता दें, ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे 6:30 से, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं। मीडियम वेव 374.5 यानी 801 kHz पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान, जिसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले कर रहे हैं। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहान का।

जय झूलेलाल। सिंधुत जी सुरहाण में हाजिर आया तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। साथियों, अॼु 14 जून हिकु ख़ासि ॾींहुं आहे, विश्व रक्तदाता दिवस। रत जंहिंजो को बि कृत्रिम विकल्प न आहे, हादसनि, ऑपरेशन या वरी थैलेसेमिया जी बीमारीअ में मरीज़नि जी जान बचाइण लाइ इंसान जे रत जी घुर्ज रहंदी आहे। रक्तदाता दिवस मल्हाइण जो मक़सदु सुरक्षित रत जी उपलब्धता बाबति सुजाॻी पैदा करणु ऐं पाण मुरादो रत ॾियण वारनि जा थोरा मञण आहे। हिन ॾींहं जी चूंड माहिर साइंसदान कार्ल लैंडस्टेनर जे जनम जे ॾींहं जे मान में कई वई आहे, जिन ब्लड ग्रुप्स जी खोज कई हुई। दोस्तो, कुझु माण्हुनि जे मन में इहा भ्रांति या वहम वेठल आहे त रत ॾियण सां शरीर में कमज़ोरी अची वेंदी, पर इहा ॻाल्हि बिल्कुलु बि सही न आहे। हिकु तंदुरुस्त माण्हू हर 3 महीने में सलाईअ सां रतु दान करे सघे थो। पाण सच त इहो आहे त रतु ॾियण सां शरीर में नयूं रत जूं कोठड़ियूं बणिजनि थियूं ऐं दिलि जी बीमारियुनि जो ख़तरो बि घटिजे थो। तव्हांजो ॾिनल हिकु यूनिट रत बि माण्हुनि जी जान बचाए सघे थो। त अचो हिन ॾींहं ते पाण मुरादो रत ॾियण जी पह कयूं, छो त हीउ रत कंहिंजी ज़िंदगी बणिजी सघे थो। हाणे कार्यक्रम में वक़्तु आहे तव्हांजे मनपसंदि गीत संगीत जो। अचो त मज़ो था माणियूं मास्टर चंदर ऐं साथियुनि जी आवाज़ में हिन सुहिणे कलाम जो।

दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही सिट्टू खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आखिर कह न बुद्धियो हुंदियो। 18 जून रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस करे मल्हायो वेंदो।

आहे। वाराणसी में ॼायल मणिकर्णिका तांबे, जंहिंखे अॻिते हली रानी लक्ष्मीबाई सॾायो वियो, सां मार्शल आर्ट, निशानेबाज़ी ऐं घुड़सवारी में माहिर हुई। 1842 में संदसि संगु झांसी जे महाराजा गंगाधर राव सां थियो। गंगाधर राव जे गुज़ारे वञण खां पोइ अंग्रेज़नि जी हड़प नीति जी ख़िलाफ़त कंदे रानी लक्ष्मीबाई ललकार कई ऐं चयई त मां पंहिंजी झांसी कंहिं बि हाल में न ॾींदसि। 18 जून 1858 में ग्वालियर जे पासे कोटा जी सराय में बहादुरीअ सां अंग्रेज़नि जो सामनो कंदे रानी लक्ष्मीबाई पंहिंजी मातृभूमिअ लाइ बलिदान ॾिनो। हीउ ॾींहुं अलवतनी, बहादुरी ऐं नारी सशक्तिकरण जी मिसाल पेश करे थो। रानी लक्ष्मीबाई जो ही बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जी तवारीख में सदा ही अमर रहंदो। हाणे कार्यक्रम में अचो त ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में गोवर्धन भारती पारां लिखियलु ही गीतु।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में हाणे वक्त आहे काव्य पाठ जो। आकाशवाणी भोपाल में अॼु असां नींढ ॾिनी आहे कवियत्री अनीता लाला जी खे, त अचो गॾिजी मज़ो था माणियूं अनीता जी जी कुझु बहितरीन रचनाउनि जो।
1: जय झूलेलाल। मुंहिंजी पहिरीं रचना आहे नाजुक रिश्ता। जंहिंखे बि छुई ॾिसो सोई भॻल टुटल।

ला नओ हुजे या पुराणो, अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। जंहिंखे बि छुई ॾिठो सोई भॻल टुटल आहे। नओ हुजे या पुराणो, अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। ॾिसण में त सभु माण्हू लॻनि था मुकमल ॿाहिरियां, पर अंदरऊं अलाए छा आहे, हॾ हॾ में सूर भरियल आहे। नओ हुजे या पुराणो, अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। सुविधाऊं पैसनि सां वरितियूं, रुतबो समाज में आहे। गाॾियूं बिल्डिंगूं सभु आहिनि, पर बूथ सभिनी जो लथल आहे। नओ हुजे या पुराणो, अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। नज़रियूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। नज़रियूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। ही क्रॉकरियूं, हे बासण सभु असां ते खिलनि था। नओ हुजे या पुराणो, अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। मानीअ जो मोल कोन्हे, मानीअ जो मोल कोन्हे। बाज़ार खाधनि सां भरियल आहे। बसि मोबाइल हुजे सॼो ॾींहुं, इते ई त ज़िंदगी रुकियल आहे। सुहिणा हुया उहे ॾींहं, सोच बि सुहिणी हुई। अॼु छा खाराईंदी अमां, सीरो खाइण जो दिलि आहे। सुहिणा हुआ उहे ॾींहं, सोच बि सुहिणी हुई। अॼु छा खाराईंदी अमां, सीरो खाइण जी दिलि आहे। हू ॾींहुं विया उॾामी, पेट सभिनी जो भरियल आहे। साईं जी मेहर हुजे, बाक़ी त सभु ॼण वयल आहे। कंहिंखे धीउनि जी चिंता, कंहिंखे धीउनि जी चिंता। को पुटनि सां रुठल आहे। कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं। जीवन जॾहिं छलियल आहे। नओ हुजे या पुराणो, अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। हिकिड़ी हास्य रचना। एयरपोर्ट वारो मूंखे इहो ॿुधायो, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। भॼंदे टुकंदे टैक्सियुनि में वेही, ॿ कलाक पहिरियों पाण खे पहुचाए। पर पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। रेलगाॾी सुहिणी, माण्हू बि सुठा। कूली बि आहिनि, चांहि वारा बि मिठा। सामान बि गॾु आहे, खाधो बि गॾु आहे। हर को माण्हू रेल में मौज थो मनाए। पर एयरपोर्ट वारनि खे माण्हू नथो भाए। घर सां वैब चैक इन था कयूं, एयरपोर्ट ते चैक इन। वरी सामान स्कैनिंग, वरी सिक्योरिटी चैक इन। वरी सामान स्कैनिंग ऐं सिक्योरिटी चैक इन। पैसेंजर वीचारो चैक इन जे चकर में, कॾहिं बेल्ट पर्स कढी जूता तो लाहे। पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। एयर होस्टेस तव्हांजी कुझु नओ न सिखी, ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मिठी। ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मिठी। अड़े कुझु त नओ सेखारियो, पाण खे सुधारियो। अॼु एआई जो ज़मानो किथे वेठो आहे। एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। आख़िर में बि त ड्रिजी ड्रिजी लहूं था, सामान मिलंदो सॼो इहो ई सोचूं था। सामान जो सिस्टम, बेल्टनि जो सिस्टम, नंबरनि सां तव्हां छो नथो हलाए। पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। छा ॿुधायां यारो, मुंहिंजी ही पेती, सभिनी खां आख़िर में इठ लाइ वेठी। सभिनी खां आख़िर में इठ लाइ वेठी। मुंहिंजा घर वारा घूरनि मूंखे था, को बि पंहिंजा सूर भला कंहिंखे ॿुधाए। एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। मुंहिंजी अगली रचना, असांजा सभई
कमु।

0: ऑनलाइन हली विया। गीत जे रूप में पेश थी कयां। असांजी महिनतुनि जा कम मशीननि ॾे हली विया, असांजी महिनतुनि जा कम मशीननि ॾे हली विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ऑनलाइन हली विया, माण्हुनि जो मोल घटिजी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। बिजलीअ जा बिल बि, पाणीअ जा बिल बि, बिजलीअ जा बिल बि, पाणीअ जा बिल बि, तरह तरह जा टैक्स घर वेठे भरिजी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। बुहारी असांजी रोबोट थो पाए, कपड़ा मशीनुनि में हर को सुकाए, बासणनि जा कम डिश वॉशर खणी विया, बासणनि जा कम डिश वॉशर खणी विया, असांजा महिनतुनि जा कम हे मशीन ॾे विया। घर जो किरानो ऑनलाइन घुरायूं, कपड़ा लटा बूट शूट सभु घर वेठा आणियूं, माउ जी जॻहि ते, हा माउ जी जॻहि ते ज़ोमेटो टोमेटो खणी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ड्राफ्टिंग ऐं चिठियूं एआई थो ठाहे, अरे डॉक्टरनि जा कम बि एआई ॿुधाए, तरह तरह जी टिकटूं मोबाइल थो कराए, तरह तरह जूं टिकटूं मोबाइल थो कराए, लाइन में बीहण जो आनंद फिटी वियो आहे, भाॼियूं वठण जो आनंद फिटी वियो आहे, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ॿार चवनि पेरेंट्स वक़्तु था विञायो, ॿार चवनि पेरेंट्स वक़्तु था विञायो, असां चवूं तव्हां सिहत था गवायो, अहिड़ी ई बहसुनि में परिवार फिटी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया।
1: महिरबानी अनीता जी हिन सुहिणी पेशकश लाइ। मूंखे पूरो विश्वास आहे त तव्हांजी रचनाऊं असांजे श्रोताउनि खे सोचण लाइ मजबूर ज़रूरु कंदियूं। दोस्तो, तव्हां सभिनी पढ़ियो ऐं ॿुधो ई हूंदो त हाणोकी भारत सरकार खे देश जी सेवा कंदे 12 साल गुज़री विया आहिनि। इन टाणे समाज जे हर तबिके लाइ ऐं हर खेत्र में कम कया विया आहिनि। 80 करोड़ खां वधीक आबादीअ लाइ मुफ़्त राशन मुहैया कराइणु हुजे या शौचालय जी सुविधा ॾियारे जीवन सवलो करण जो कमु हुजे, स्वास्थ्य जे खेत्र में आयुष्मान भारत ऐं जन औषधि केंद्र जहिड़ा कम, अटल टिंकरिंग लैब ज़रिए युवाउनि खे नवां वझ ॾियारण जहिड़ा कम, हारियुनि लाइ फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड जहिड़ियूं सुविधाऊं, मेट्रो नेटवर्क, वंदे भारत ट्रेनूं, अटल सेतु, चिनाब रेल ब्रिज जहिड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रिए राष्ट्र निर्माण या आत्मनिर्भर भारत जी संकल्पना, ही सभु गुज़िरियल 12 सालनि जो हासिलु आहे। कुल मिलाए चई सघिजे थो त ही 12 साल विश्वास, विकास ऐं जन कल्याण जा साल रहिया आहिनि। दोस्तो, इन्हे सां गॾु ई अॼु असां तव्हांखे ॼाण ॾियण था चाहियूं प्रधानमंत्री जे 15 सूत्रीय कार्यक्रम जी, जंहिंजो लक्ष्य आहे 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जे आर्थिक नज़रिए कमज़ोर तबिके ताईं सरकारी योजनाउनि जो फ़ाइदो हिकु सरियो पहुचाइणु। ही कार्यक्रम हिकु जतन आहे अल्पसंख्यकनि खे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जहिड़े खेत्रनि में सशक्त ठाहिण जो। इन्हे जे तहत कोशिश रहे थी त सभिनी सरकारी योजनाउनि, जीअं त छात्रवृत्ति योजना, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत वग़ैरह जो कुल बजट जो हिकु हिसो अल्पसंख्यकनि ताईं पहुचाइण लाइ निर्धारित ज़रूरु करे सघिजे। साल 2006 खां हलंदड़ ही कार्यक्रम अल्पसंख्यक मंत्रालय जी निगरानी में रहंदो आहे। पोइते रहिजल तबिके खे मुख्य धारा सां जोड़ण ही हिन कार्यक्रम जो उद्यम आहे। ऐं दोस्तो, इन ज़रूरी ॼाण खां पोइ अचो त हलंदे हलंदे कार्यक्रम में ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में अर्जुन हासिद पारां लिखियलु गीत।

दोस्तो, इन गीत सां गॾु ई असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थो थिए। उमेद आहे त तव्हांखे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजिबो, सभ जो भलो।

अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है कमल खस का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। राजगढ़ जिले में वर्षों से रेल सेवा की प्रतीक्षा कर रहे कुरावर और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए गुरुवार का दिन नई उम्मीद लेकर आया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने विशेष निरीक्षण ट्रेन से कुरावर श्यामपुर रेलखंड का निरीक्षण कर ट्रैक सुरक्षा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संकेत दिए कि यदि शेष कार्य समय पर पूरे हो गए तो जनवरी 2027 से भोपाल कोटा रेल कनेक्टिविटी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2026 तक सभी लंबित कार्य पूरे होने की संभावना है। निरीक्षण के लिए पहुंची विशेष डीजल इंजन युक्त ट्रेन को देखने के लिए कुरावर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे। पूरे दिन स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। कुछ दिन पहले रेलवे अधिकारियों ने भोपाल रामगंज मंडी रेल मार्ग में घटोली से लेकर राजगढ़ तक के रेल मार्ग का निरीक्षण कर मंजूरी दी, जिसके बाद जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में कोटा से राजगढ़ तक रेल सुविधा शुरू होने जा रही है। भोपाल कोटा रेल संपर्क से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं व्यापार, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे। मौसम की अगर बात करें तो जिले में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मानसून की संभावित दस्तक से पहले आसमान में काले बादल मंडराने लगे हैं और बीच बीच में आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिल रहा है। उधर मानसून के आगमन से पहले जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। किसान खेतों में जुताई, बखरनी और अन्य कृषि कार्यों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं सहकारी समितियों और कृषि केंद्रों पर खाद बीज की मांग भी बढ़ने लगी है। इस बार मौसम विभाग औसत से कम बारिश का अनुमान लगा रहा है, जिसके चलते इस बार खरीफ फसलों की पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे किसान अपनी फसलों के रकबे में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी अनुमान के हिसाब से कृषि विभाग ने भी फसलों की बोवनी के लक्ष्य में रकबे में परिवर्तन किया है। इस बार सोयाबीन के रकबे का लक्ष्य कम किया गया है तो मक्का, उड़द और तिल का रकबा बढ़ाया गया है। पिछले खरीफ सीजन की अगर बात करें तो जिले में 2,05,251 हेक्टेयर में मक्के की बोवनी की गई थी, जबकि इस सीजन में इसका लक्ष्य बढ़ाकर 3,08,800 हेक्टेयर का रखा गया है। जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना सप्तक ने बीते दिनों सिविल अस्पताल ब्यावरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का जायजा लेकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने भ्रमण के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों का विस्तार से निरीक्षण बीते दिनों किया। इस दौरान कमिश्नर ने मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बीते दिनों ब्यावरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन के माध्यम से 200 यात्रियों को रवाना किया गया। पहली बार ब्यावरा से अयोध्या तक एसी ट्रेन की व्यवस्था की गई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बीते बुधवार को खिलचीपुर, जीरापुर और माचलपुर क्षेत्र की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ई टोकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में 16 जून को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक जिनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं से स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे इस युवा संगम कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिले में एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा दिव्यांगजनों को एल्मिको तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र उज्जैन के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, चिन्हांकन और उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन विभिन्न तिथियों को किया जाएगा। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग नारायण सिंह पवार और सांसद रोडमल नागर ने ब्यावरा विधानसभा के सुठालिया मंडल क्षेत्र में पहुंचकर नागरिकों, वरिष्ठजनों और प्रबुद्धजनों का सम्मान कर उनसे संवाद किया। वहीं अधिक मास में विभिन्न स्थानों पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। भैंसवा माता धाम पर 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कराया गया तथा जिले में अलग अलग जगहों पर विशेष यज्ञ व भागवत कथा के आयोजन किए जा रहे हैं। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख था कमल खस का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। सुनिए वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी।

आतंक के खिलाफ 140 करोड़ भारतीयों की ललकार है वंदे मातरम। वंदे मातरम शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है, कोटि कोटि भारतीयों के दिलों की धड़कन। ये कालजयी उद्घोष हर भारतीय को देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की भावना से भर देता है। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने या देश इस अमर गीत को सम्मान में साल भर तक चलने वाला एक राष्ट्रीय स्मरणोत्सव मना रहा है। इसका उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ी इस गीत में छिपी उस ऊर्जा को पहचानने जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को एक अद्भुत प्रेरणा से भर दिया था, ताकि हमारी युवा पीढ़ी वंदे मातरम में निहित स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्रीयतावाद से संस्कारित हो सके, ताकि जिस भावना से भरकर कल हमने अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराया था, उसी भावना को पुनर्जीवित कर आज हम विकसित भारत के निर्माण में एकजुट होकर अपना योगदान दे सकें, अपने भारत को अग्रणी रख सकें, अपने भारत को सर्वोच्च सम्मान दे सकें, उसको वो अग्रणी जगह दे सकें जहां पर उसकी महत्ता है। वंदे मातरम।

0: श्रोता सुन रहे थे वंदे मातरम गौरवगान की 150वीं सदी। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:10 होने को है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे विश्व दर्पण, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या 1 करोड़ तक सीमित करने के लिए जनमत संग्रह आज। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने मोरक्को के विरुद्ध 1-1 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि फ्रांस में प्रस्तावित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश और भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। व्हाइट हाउस के अनुसार G7 शिखर सम्मेलन में अमरीकी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर मित्र देशों के साथ सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता की सफलता की आशा है।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर

0: की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान और 7 को पवित्र शहर कोम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या सीमित करने के प्रस्ताव पर आज जनमत संग्रह हो रहा है। इस प्रस्ताव में देश की आबादी 1 करोड़ तक सीमित रखना है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो स्विट्जरलैंड जनसंख्या पर रोक लगाने वाला यूरोप का पहला देश बन जाएगा। देश की वर्तमान जनसंख्या 90 लाख से अधिक है, जबकि एक दशक पहले यह 80 लाख से कुछ अधिक थी। आबादी का 1/4 से अधिक हिस्सा विदेशी मूल के लोगों का है। यह प्रस्ताव देश के सबसे बड़े राजनीतिक समूह स्विस पीपल्स पार्टी ने रखा है। इटली की राजधानी रोम में कल प्रवासियों के मुद्दे पर विरोध और समर्थन में अलग अलग प्रदर्शन हुए। प्रवासियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने की मांग वाली एक पहल को संसद में चर्चा के लिए आवश्यक 50,000 हस्ताक्षर मिल गए हैं। विरोध और समर्थन दोनों प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि किसी प्रकार की हिंसा की सूचना नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की पाकिस्तान सरकार की आशंकाओं के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का बातचीत का प्रस्ताव ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अस्वीकार कर दिया है। कमेटी ने कहा है कि बातचीत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। समाचार एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तानी सरकार के लिए मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से निपटना कठिन होता जा रहा है। इस बार विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। म्यांमार में कल रात 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। एक सप्ताह पहले भी म्यांमार में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। म्यांमार मध्यम और तीव्र भूकंप तथा सुनामी के संकट के लिए संवेदनशील माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायण ने बेंगलुरु में बताया कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद विश्व कप में जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया है। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल के बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। वहीं ग्रुप बी में कतर और स्विट्जरलैंड का मुकाबला भी 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। आज ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच मैच खेला जा रहा है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। मैनचेस्टर में कल स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से

0: एक 100 ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:20 हुए हैं और ये समय है जब हम आपके लिए लेकर आते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वंश से, आवाज लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की, समीर के बोल हैं आनंद मिलिंद का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार। आइए सुनते हैं फिल्म वंश का गीत आप सबकी फरमाइश पर।

फरमाइशी फिल्म संगीत का ये अगला गीत पेश है। फिल्म का नाम है वीर, राहत फतेह अली खां और सुजैन डमेलो की आवाज़, गुलजार की शब्द रचना और धुन साजिद वाजिद की। सुनना चाहे आप सभी ने नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन और रौनक सेन, पिंडरी मंडला से सुमत कुमार जैन, मीना जैन, कबीर जैन, वरुण जैन और वान्या जैन।

फिल्म हरजाई का ये गीत था जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। शब्द रचना निदा फाजली की और धुन आरडी बर्मन की थी। सुनना चाहा आपने कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश नीलम नितिन पलक करण गीतू निहारिका और वंश बत्ता। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा संगीता भावना और प्राची नेमा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी विष्णु साहू अंकिता अमृता जोशी और लोकेश जोशी।

आइए अब हम सुनते हैं हीरालाल पन्नालाल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी किशोर कुमार और आशा भोसले ने। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है और फरमाइश आप सभी की है भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, रविंद्र शुक्ला, वीरेंद्र वर्मा और सावन नायक। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले। पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वड़ौदे और बीटी वड़ौदे। आइए सुनते हैं फिल्म हीरालाल पन्नालाल का गीत जिसे गाया किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, ऊषा, अमित कुमार, हैप्पी, दुबिया, नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल, बिलहरी, बड़खेड़ा, कटनी से संतोष सिंह, अवधेश कुमार, सुमेर और सुदामा सेन, प्यारेलाल बढ़ई एवं मुन्ना खान, और साथ में छत्तीसगढ़ बेमतेरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सारथी और श्रीमती सुषमा सारथी। आप सभी के पसंद पर सुनिए, फिल्म का नाम है हद कर दिया आपने, जसपिंदर नरूला ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आनंद राज आनंद का संगीत है।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। हम आपको बता दें हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगला गीत जिसकी फरमाइश की है पिंडरी मंडला से कमला प्रसाद शर्मा, कृपाल पटेल, कबीर जैन, सुमत कुमार जैन, संजय जैन, मोहम्मद मेहराली, राधेश्याम केवट और वरुण जैन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और बनियापारा धमतरी से रामचंद मखीजा, काफिर शर्मा और सविता माखीजा, पूजा और शरद और साथ में इनका पूरा परिवार। मोहल्ला फतेहगढ़ से लुधियाना से चिट्ठी आई है विनोद पुरी, VP रंजू, अशोक, सुशील, BK पुरी, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रामा मलिक, गुनाल निधि, हरीश पुरी, सतीश, राकेश, विनोद पाली, DC और अरुण। इनके साथ है नेहा पुरी, एकता पुरी, शम्मी पुरी, बोधी पुरी और सुनील पुरी, VK पुरी और RS पुरी और साथ में है इनका परिवार और इनके दोस्त गण। आप सभी के पसंद पर सुनिए फिल्म जंजीर का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार कल्याण जयानंद जी।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले ने इसे गाया, आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन ने संगीत दिया। पसंद किया आप सभी ने। जबलपुर बरगी नगर से रविंद्र गद्रे, सुभाष दिगंबर, राजेश गद्रे, शिवम शुभांग और सृष्टि गद्रे। सर्रई ग्राम तहसील केवलारी सिवनी से कमला प्रसाद शर्मा, संजय जैन और घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता अस्मिता, सौरभ गोड़ाल दिलवाले, ये इन्होंने ये चिट्ठी भेजी है राजपुर से। और सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही, सृष्टि राही। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतक विरक और मीका विरक। और महाराजा रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल किशोर, विशाल कुमार और शीला गायत्री। इसी के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से।

0: में बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में तेज संपर्क पर जोर देते हुए अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद विश्व कप में जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। वहीं आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आइए जानते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन बनने वाले हैं। हेलो।
3: हाँ सर जी, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ सर, ध्रुवराम साहू बात कर रहा हूँ, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
2: स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। तो ध्रुवराम साहू जी, क्या करते हैं आप?
3: सर अभी तो खेती बाड़ी काम चालू है सर।
2: क्या बो दिया अभी खेती में?
3: बुआई नहीं की है सर, अभी तैयारी है
2: जी।
3: ग्रीष्मकालीन जुताई करवा दिए हैं
2: जी।
3: बस अब धान की थरहा रखना है सर खरीद के लिए।
2: धान बोएंगे? कहाँ से हैं आप?
3: बालाघाट से सर।
2: अच्छा, हाँ बालाघाट में तो धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, हमें पता है अच्छे से।
3: घाट का बीरसा ब्लॉक है सर, वहाँ गाँव है हमारा कनिया।
2: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
3: फिल्म का नाम है सर तहलका, और गीत के बोले दिलवालों का डोला दिलदार।
2: कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा?
3: सर अपन क्या किसानों को कहना चाहूंगा, जैविक खेती करें, ज्यादातर रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें।
2: आपने जो अभी खेत की तैयारी कर रखी है, ये कैसे खेत हैं? जैविक हैं या फिर?
3: जैविक खेत है सर, जैविक अपन जो गोबर कंपोस्ट खाद है ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं
2: जी।
3: जी सर, जो रासायनिक खाद है डीपी यूरिया वगैरह, उसको कम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं।
2: चलिए, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट में।

0: हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश फोन करें, गीत सुने।
0: जी सर, नमस्ते। मैं
1: नमस्ते।
0: ग्राम उलझान बोलिया, गेंदालाल परिहार।
1: हाँ गेंदालाल जी, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं
0: मैं
1: आप
0: ग्राम उलझावन जिला सीहोर।
1: जी? आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
0: सर जी, जानी दुश्मन फिल्म गाना है
1: जानी दुश्मन, कौन सा गाना?
0: जी, इसके गाना है सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गई।
1: यही गाना सुनने की कोई खास वजह?
0: नहीं सर, मनोरंजन के लिए सुनते हैं गाने।
1: नहीं, मनोरंजन के लिए तो हम सुनते ही हैं। कई बार कुछ गानों के पीछे कुछ मैसेज होता है, हम उसके लिए भी सुनते हैं कि हम ये सुनना चाहते हैं, इस तरह की चीज सुनना चाहते हैं, है ना? और करते क्या हैं आप गेंदालाल जी?
0: शहर में सिलाई काम है।
1: सिलाई का काम है, और सिलाई का काम करते करते आप गीतों का आनंद भी लेते रहते हैं, है ना? इसीलिए कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं हम तो, है ना?
0: जी सर, ये भी चलता
1: बिल्कुल
0: रहता है मोबाइल पे। बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ठीक है, गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: फोन करेंगे सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हेलो सर।
0: हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते
1: जी सर, हम सतना से बोल रहे हैं।
0: अपना नाम बताएंगे?
1: रमेश कोटवानी।
0: रमेश कोटवानी जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: गाना हमको वो वाला सुनना है सर।
0: कौन सा?
1: अब्दुल्ला का।
0: अब्दुल्ला कौन सा गीत?
1: खुदा तेरे हर है खुदा वाला गाना।
0: ए खुदा तेरा हर फैसला,
1: हर फैसला मंजूर है।
0: बहुत बढ़िया गीत है। यही गीत सुनने की कोई खास वजह है?
1: मैं यार सर खास वजह नहीं, पुराने सुनने वाले हैं 40 साल।
0: जी जी जी, ये मैसेज है इस गाने में, क्योंकि
1: बचपन से सुनते, जब रेडियो की दुकान थी छोटा सा लेके घूमते रहते थे।
0: रेडियो चीज ही ऐसी है, देखिए क्या होता है कि रेडियो सुनने से हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते करते भी रेडियो सुन सकते हैं। हमारे काम का भी हर्ज कोई नहीं होता है ना। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें कि सुने।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यानी यमुना बेल्ट के किनारे से सर मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: बेटा सिंह यादव जी,
1: जी सर
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी सर बहुत धन्यवाद।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: कौन सर बोल रहे हैं सर आप?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आपसे पहले बात हो चुकी है एक बार मेरी।
1: दिनेश भैया आपसे ही बातचीत हुई थी हमें, तो सर जो गर्व फिल्म का सुनना चाहते हैं, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे।
0: करते क्या है आप बेटा सिंह जी?
1: जी सर वैसे खेती किसानी के काम करता हूँ और किराने की दुकान जो भी है जो बंद है तो उसको खोलने के विचार किए हम।
0: तो चलिए मतलब खेती किसानी में अभी अभी क्या बोया है आपने खेत में?
1: अभी तो सर जो भी है धान की जो भी है ना वही बुवाई चालू किए हैं और इसके बाद में भी थोड़ा बारिश हो जाएगी तो उसको लगवाई चालू कर देंगे।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो से।

0: फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले बोल रहा हूँ सर।
0: सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास?
1: हाँ, तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले।
0: वाड़ीले, तो कब बात हुई थी, इसके पहले कब फोन लगाया?

0: आया था आपने?
1: जी सर, 8-10 दिन हो गए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे श्रोता बड़े जागरूक हो गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कॉल हम आप लोगों के नहीं आते हैं, अब 8-10 दिन बाद ही आप लोग लगाते हैं।
1: हाँ जी, 8-10 दिन बाद कॉल लगाया सर, वो जो नियम का पालन कर रहे हैं हम।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या सुनना चाहेंगे देवीदास जी आज?
1: बता रहा हूँ
0: जी,
1: गायकर
0: के
1: और गीत के बोले, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।
0: अच्छा चलता हूँ दुआओं में
1: याद रखना।
0: अच्छा, यही गाना सुनने की कोई खास वजह है, कुछ मैसेज है, किसी को कहना चाह रहे हैं?
1: अच्छी लगती है और गाना भी बढ़िया है।
0: आवाज अच्छी लगती है और गाना भी बढ़िया है, निश्चित ही गाना बहुत बहुत सुंदर है। तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है, फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, हमारी किससे बात हो रही है?
1: मेरा नाम महर्षि गर्ग है।
0: ठीक है महर्षि जी, क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: मेरी जंग फिल्म का।
0: कहाँ से हैं पहले ये बताइए ना आप।
1: श्रीनगर जिला महोबा।
0: गीत के बोल बताएंगे?
1: देखिए हर कदम एक नई जंग है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या आप समझती है ऐसा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है? अच्छा, क्या करती हैं आप?
1: सर मैं लड़का हूँ।
0: अच्छा आप लड़का है, तो महर्षि आपका नाम है ना? तो क्या करते हैं महर्षि जी आप?
1: पढ़ते हैं।
0: पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में?
1: फिफ्थ क्लास में।
0: फिफ्थ क्लास में, तो सिक्स क्लास में। तो जिंदगी एक जंग है कैसे मानते हैं आप?
1: जिंदगी हर कदम एक जंग है, नई जंग है।
0: अच्छा आपको अच्छा लगता है गाना, है ना?
1: हाँ।
0: ठीक है, तो गीत गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। और कौन कौन है आपके घर में?
1: पापा मम्मी भैया बहन।
0: अच्छा पापा क्या करते हैं आपके?
1: दुकान है, किराना की।
0: किराने की। और आप सिक्स क्लास में पढ़ते हैं, और बाकी जो बहन है और भैया है वो क्या करते हैं?
1: भैया की जनरल स्टोर है।
0: भैया की जनरल। अच्छा भैया बड़े हैं आपसे?
1: हाँ।
0: और जो दीदी है?
1: दीदी पढ़ती है।
0: कौन सी क्लास में?
1: एमएससी कर रही
0: है। एमएससी कर रही है, मतलब आप सबसे छोटे हैं।
1: हाँ।
0: अच्छा, और मेरी जंग फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। गीत का आनंद लीजिए, आपकी पसंद का गीत हम जरूर सुनवाते हैं। है?

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें गीत
1: हेलो।
0: सुने। हेलो,
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं राजूलाल मेहर, गांव भीलवाड़ा, जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
0: राजस्थान से बोल रहे हैं आप? तो क्या करते हैं आप राजूलाल मेहर जी?
1: वैसे मैं कारीगरी का काम करता हूँ, मकान भी बनाता हूँ और
0: अच्छा,
1: खेती बाड़ी भी करता हूँ।
0: जब आपके पास खेती बाड़ी का काम नहीं होता होगा उस टाइम में आप कारीगरी का काम करते होंगे।
1: हाँ,
0: तो कारीगरी में क्या कारीगरी करते हैं आप?
1: मकान बनाने का।
0: मकान में कुछ ऐसा स्पेशल राजस्थान की बड़ी क्या है कि कुछ कलाकृतियों में बड़ी विशेषज्ञता है, तो आप किस तरीके से मकान बनाते हैं? सामान्य या कुछ स्पेशल?
1: सामान्य बना देते थे हम तो, जैसे हमारे यहाँ झालावाड़ जिले में कोटा स्टोन की खाने हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ बहुत फेमस है यहाँ झालावाड़ की।
0: जी जी
1: कोटा
0: जी जी
1: स्टोन की फैन।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे राजूलाल जी आप?
1: तो मुझे सुना है इंतहा हो गई इंतजार की।
0: इंतहा हो गई इंतजार की,
1: जी
0: कौन सी फिल्म का गीत है ये?
1: शायद शराबी का।
0: जी जी जी इसी गीत को सुनने की कोई खास वजह?
1: और वैसे फिल्म देखी थी मैंने, यार एक बार और सुन ले।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बार आपने सुनने की इच्छा की है तो सुना रहे हैं आपका ये मनपसंद गीत, तो गीत का आनंद लीजिए। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते, अब
0: जी सर।
1: बताइए
0: नमस्ते,
1: कौन
0: मैं जगदीश चौहान, फिल्टर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ। मुझे गाना सुनना है, राजा
1: सा
0: और रंग का। माँ तू कितनी अच्छी है, प्यारी
1: राजा और
0: प्यारी
1: रंग
0: है।
1: का,
0: राजा और रंग का,
1: माँ तू कितनी अच्छी है।
0: हाँ
1: तो यही गीत सुनने की कोई खास वजह है राजा और रंग फिल्म का? माँ तू गीत तो बहुत ही अच्छा है ना?
0: हाँ
1: तो
0: माँ से
1: क्यों
0: बहुत प्यार करते हैं सर।
1: माँ से बहुत प्यार करते हैं? माँ माँ भी आपसे निश्चित ही बहुत प्यार करती होंगी।
0: जी, बहुत चाहती मेरी माँ भी में।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि माँ का जो प्यार होता है ना,
0: जी
1: वो शायद दुनिया में सबसे अलग होता है। एक
0: सही
1: निस्वार्थ
0: बात है
1: प्रेम
0: जी।
1: होता है, और इसीलिए हर बच्चा, चाहे मैं
0: कोई
1: हूँ, आप हो, या कोई भी हो, वो माँ से
0: बात
1: इसीलिए जुड़ा होता है क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम मिलता है उसको वहाँ पर,
0: सही
1: है
0: बात है, माँ से जुड़ा हुआ है सब।
1: माँ से जुड़ा हुआ है और माँ से ही हम हैं। गीत आपने बहुत ही अच्छा पसंद किया है, गीत आ रहा है आपका, आपके रेडियो सेट पर। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इसी गीत के साथ फोन करें गीत सुने कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से पहले आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत के स्टार्टअप्स तथा नवाचार प्रणाली को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने वाले कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा है कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पांडुलिपि संरक्षण अभियान के लिए पांडुलिपि धारकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें अभियान से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 10,24,571 पांडुलिपियां होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और विकास के स्वर्णिम 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भोपाल में विद्यार्थियों से संवाद में इस दौरान हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दी। सीहोर के शासकीय आरके कृषि कॉलेज में सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के संदर्भ में कल किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी गई। फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे होगा और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोतों, कार्यक्रम में पहला पत्र हमने शामिल किया है, भोपाल से ये पत्र हमें मिला है। पत्र लिखने वाली हैं कुसुम कीर, ज्योति वर्मा, अर्जुन वर्मा, अंश, परी, मिष्टी और लक्ष्मी। ये सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना है, संगीत है SD बर्मन का। तो आइए इनके साथ हम भी सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फकीरा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। डॉक्टर संस्कृति कुल्हारे, वैदेही, सौम्या, रेवती, अंशिता और इनके मित्रों ने पत्र लिखा है कोलार रोड भोपाल से। गौतम नगर नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहते हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फकीरा फिल्म का ये गीत।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। दतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से हमें पत्र मिला है जूही, शुभी, श्रुति, भारती, दक्ष और मनीष वर्मा का। तो आइए सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं चितचोर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है येसुदास और हेमलता ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल ये गीत सुनना चाहते हैं। ये पत्र हमें इन्होंने लिख भेजा है सारणी जिला बैतूल से। इसी गीत को सुनना चाह रही हैं सुमन, दिव्यानी, दिव्य, निक्की और इनके परिवार के सदस्य। ये पत्र जबलपुर से हमें मिला है। राग रोली और प्रशांत दुबे ने भोपाल से इस गीत को सुनना चाहा है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। जीशान वारसी इस गीत को सुनना चाहते हैं बरेली से। अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब, नावेद, इन्होंने हमें मुरादाबाद से पत्र लिख भेजा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बंडा सागर के श्रोता कृष्णा, जिया, मोना, रश्मि, संध्या, दीपिका और प्रियंका। औरंगाबाद के कुछ श्रोताओं का भी पत्र हमें मिला है। राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप, राशि और इनके परिवार के सदस्य, इन्होंने ये पत्र हमें लिखा है औरंगाबाद से। तो आइए सुनते हैं मिलन फिल्म का ये नगमा।

0: मिलन फिल्म के इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला जंग लगी तलवार। आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नशा करते करते शिबू को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नारायणी लिचू को नशा करवाने के लिए कोसती है। होश में आने पर शिबू नारायणी से माफी मांगते हुए फिर ऐसा न करने की शपथ लेता है। शंभू और भृगु हड़ताल से फैल रही भुखमरी पर करुण चर्चा करते हैं और बेरोजगारी को देश के लिए कोढ़ बताते हैं। ठाकुर साहब लिचू को फेंकने के लिए जो कबाड़ देते हैं उनमें से उसे एक बोतल मिलती है। लिचू और शिबू मिलकर नशा करते हैं। तब शिबू कहता है कि वो औरत से डरने वाला आदमी नहीं है। यशवंत बलबीर स्वामी से हड़ताल को लेकर बहस करता है और लोकल लीडर शास्त्री जी से मिलवाने के लिए कहता है। दोनों शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री उनसे फंड का इंतजाम करने के लिए कंपनी का स्टील सीमेंट लोहा आदि बेचने के लिए कहता है। यशवंत ध्यान दिलाता है कि कंपनी ने इन सामानों को बेचने के लिए कोटेशन मंगवाए हैं। शास्त्री कोटेशन देने वाले व्यापारियों को पीट पीट कर भगा देने के लिए कहता है। ये सुनकर यशवंत और बलबीर स्वामी चौंक जाते हैं। अब आगे।

0: अब तुम्हारी यूनियन क्या कर रही है रामू बाबू?
1: हुजूर, सुनने में आया है कि यशवंत और बलबीर स्वामी शास्त्री जी से मिलने गए थे।
0: अच्छा, तो शास्त्री जी ने क्या कहा?
2: सरकार, शास्त्री जी सन 1975 में यूनियन और कंपनी के बीच हुए समझौते को इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती हुआ समझौता साबित करना चाहते हैं।
1: सरकार,
2: सुनना है वो कोई सबूत भी पेश करने वाले हैं सरकार।
1: अगर ऐसा हो गया माई बाप तो कंपनी कई साई के पानी में।
0: नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे रामू बाबू, हम ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे।
2: आप क्या करने की सोच रहे हैं?
0: अभी ये राज की बात है, इसे राज ही रहने दो, जब समय आएगा तो तुम भी जान जाओगे।
1: ठीक कह रहे सरकार। ठाकुर साहब की जय हो,
2: जय हो।
1: आप तो जो भी कदम उठाएंगे कंपनी के हित में ही उठाएंगे सरकार।
0: क्यों भाई रामू बाबू, सुना है कि यूनियन के साथ तुम दोनों की कोई गुप्त सभा हुई थी।
2: सरकार, आपने बिल्कुल ठीक सुना है सरकार।
0: तो क्या यूनियन ने तुम दोनों को कोई खास काम सौंपा है?
1: हाँ हुजूर, कंपनी ने पुराना सामान बेचने के लिए कोटेशन मंगाए हैं ना, तो अब कोटेशन देने वाले व्यापारियों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाए।
0: तुम लोग क्या करोगे?
1: पूरा इंतजाम है साहब, साई नदी गवाह रहेगी और हम मशीनों के पुराने बचे हुए टुकड़े और पुर्जों को खरीदने वाले व्यापारियों को मारपीट के भगा देंगे।
0: क्या तुम लोग कंपनी के खिलाफ कदम उठाओगे?
2: अरे नहीं नहीं सरकार, भला हमारी क्या वजह, क्यों क्यों क्यों रामू, जो हम कंपनी की मुखालफत करें।
1: अरे नहीं सरकार, जरा सोचिए, अगर हम व्यापारियों को मारपीट कर भगा दे तो क्या होगा?
2: क्या होगा?
1: यहाँ पर हिंसा फैलेगी।
2: हाँ सरकार, हड़ताल करने वालों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगेगा।
1: हाँ सरकार, और पुलिस वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।
2: हाँ सरकार, हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा।
1: और इसी में तो कंपनी का फायदा
2: ही फायदा है सरकार।
0: अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम दोनों बहुत बहादुर, बुद्धिमान भी हो। ये लो अपनी बोतल, विलायती है।
1: ठाकुर साहब की जय हो।
0: बस बस बस, तुम लोग इसी तरह यूनियन की खबर मुझ तक पहुंचाते रहना, बस तुम्हें इसी तरह बोतल मिलती रहे।
3: देखा बलबीर स्वामी, शास्त्री जी की बात मानने का क्या नतीजा निकला?
4: यशवंत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिटने वाले व्यापारियों ने हड़तालियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है, चारों ओर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है।
3: अरे पुलिस ने हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, अब क्या होगा बलबीर? अरे कब तक हम मुख्यालय से मदद के इंतजार में बैठे रहेंगे? अब हमें ही कुछ करना होगा।
4: हम गिरफ्तार हुए साथियों को छुड़ाने के लिए जुलूस निकालेंगे, कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे।
3: लेकिन प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास फंड कहाँ है बलबीर?
4: तो मजदूरों से चंदा इकट्ठा करो।
3: वाह वाह बलबीर स्वामी वाह, हमारे मजदूर भाई भूखे पेट रहकर भी आप लोगों पर विश्वास करके हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, और एक तुम हो जो मजदूरों की खाल तक उधेड़ लेना चाहते हो। जानते हो कल क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
3: अरे हमारे दो मजदूर किसानों से गेहूं मांगने गए तो किसानों ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारे टूटी कमर लेकर सरकारी अस्पताल में पड़े हुए हैं।
4: ये कैसे हो सकता है? किसान तो हम मजदूरों के साथ हैं। तुम्हारे सामने ही तो सबने मजदूर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए थे ना।
3: बलबीर, सुना है कि ठाकुर साहब ने किसानों के मुखिया को खरीद लिया है।
4: ओह, तो ये बात है, इसका मतलब पानी अब सिर से ऊपर बहने लगा है।
3: अब तुम ही बताओ बलबीर कि हम लोग क्या करें? अगर मजदूरों पर ऐसे ही दमन चक्र चलता रहा तो हड़ताल तो बीच में ही टूट जाएगी।
4: अरे कंपनी का मकसद भी तो यही है कि हड़ताल टूट जाए।
3: क्या?
4: मगर हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और कंपनी की ईंट से ईंट बजा देंगे।
3: तुम्हारा चरित्र मैं आज तक नहीं समझ पाया बलबीर स्वामी।
4: तुम कहना क्या चाहते हो यशवंत?
3: अरे कभी तो मुझे लगता है कि तुम शास्त्री जी के साथ मिलकर हम मजदूरों के साथ छल कर रहे हो, और कभी लगता है कि तुम सच्चे मन से हमारे साथ हो।
4: देखो यशवंत, सच बात तो यह है कि ताकत के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, और वो ताकत शास्त्री जी के पास है। उनकी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जान पहचान है। ऐसे में उनकी ताकत का मजदूरों के हित में इस्तेमाल करने के लिए उनकी चापलूसी करनी पड़ती है, वरना हकीकत तो यह है कि मैं तन मन धन से मजदूरों के साथ हूं।
3: अच्छा, तो फिर मेरी एक बात मानोगे?
4: जरूर।
3: बलबीर, क्यों ना मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों का इंतजार करने की जगह हम अपना प्रतिनिधि मुख्यालय भेजें?
4: विचार तो तुम्हारा अच्छा है।
3: तो फिर विलंब क्या है? अब क्या शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हो?
4: नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, एक सुझाव और है मेरे पास।
3: सुझाव? अब कैसा सुझाव, जरा मुझे भी बताओ।
4: हम थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके कंपनी के दफ्तर पर बेमियादी धरना देंगे, और जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात नहीं करते तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे।
3: हाँ, बलबीर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। चलो, अधूरी तैयारियों को पूरा करें।
4: हाँ, चलो ये चलो आप।
5: नारायणी काकी, राम राम काकी।
6: राम राम।
5: कहाँ से आ रही हो?
6: अरे नारायणी, तेरे पास कुछ खाने को है? हमारे पेट में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया।
5: काकी, क्या बताऊं, मैं खुद 3 दिन से भूखी हूँ, और मेरा मुन्ना भी खालिस पानी पर जिंदा है।
6: अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हमारी बात किसी ने नहीं मानी।
5: लेकिन काकी, तुम खलासी लंगर की तरफ से कैसे आ रही हो?
6: अरे गई तो थी 2 रोटी का इंतजाम करने, रोटियां 2 नहीं मिली। लेकिन हाँ, यूनियन की सच्चाई का पता लग गया।
5: यूनियन की सच्चाई? मैं समझी नहीं काकी।
6: हम मजदूर लोगन के खून पसीना की गाड़ी कमाई यूनियन के नेता दारू में उड़ा रहे हैं। अब तक बैठे हैं खलासी लंगर में वो दोनों गद्दार।
5: क्या?
6: हाँ।

0: बलबीर भाई वाह।
1: कालू भाई ये ले एक पैग और ले।
0: अरे वाह वाह वाह, एक पैग और भाई वाह, पीने पिलाने का तो मजा ही कुछ और है। देखो भाई बलबीर, हड़ताल करें मजदूर, चंदा दे मजदूर, भूखे मरे मजदूर, और चंदे के पैसे से मौज मस्ती करे हम यानी के यूनियन के नेता।
1: धीरे बोल धीरे कालू, अगर किसी ने सुन लिया तो
2: गजब हो जाएगा।
0: अरे बलबीर भाई, तुम यूनियन के अध्यक्ष हो।
1: हाँ।
0: और मैं
1: सेक्रेटरी।
0: सेक्रेटरी शास्त्री जी का हाथ भी तो हमारे सर पर है। देखो भैया, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का।
1: लेकिन कालू, डरना सीख, डरना सीख। किसी से भले ही मत डर, लेकिन लेकिन यशवंत से तुझे डरना चाहिए।
0: यशवंत? अरे कौन यशवंत? हो, वो दलित नेता?
1: हाँ बिल्कुल वही।
0: अरे छोड़ यार बलबीर, उस मच्छर से क्या डरना। हाँ
1: अरे यार कालू, मत भूल कि एक मच्छर से मलेरिया की महामारी हो जाती है।
0: ओह,
1: और ये महामारी इंसान को मौत के आगोश में पहुंचा कर ही पीछा छोड़ती है।
0: यार बलबीर,
1: हाँ
0: मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो।
1: हाँ।
0: देख बलबीर, उसे तो जब कहे ना तब उसे मसल कर रख दूं।
1: अरे अरे कालू, मत भूल कि साई के 4000 मजदूर उसके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, और वो भी मजदूरों के लिए मरने मारने पर तैयार रहता है। अगर अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी इस मौज मस्ती पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। शास्त्री जी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, सो अलग।
0: भाई बलबीर, मुझे तो लगता है कि ये शास्त्री जी कोई बड़ी गेम खेल रहे हैं यार।
1: अरे अब हमसे क्या, अब भाई हम तो ठहरे छोटे नेता, और वैसे भी शास्त्री जी ने यूनियन के एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। सबका सब पैसा हमारे पास है।
0: अच्छा,
1: फिर हमें उनके बड़े गेम से क्या लेना देना।
0: अरे अरे ठीक कहते हो भाई। अच्छा भाई बलबीर, इसी बात पर एक पैग और हो जाएगा।
1: अभी लो।
0: शाबाश।

0: यशवंत बाबू, यशवंत बाबू।
1: अरे नारायणी, तुम मेरे घर में? अब आओ, अंदर आ जाओ।
0: नहीं, क्षमा चाहती हूँ यशवंत बाबू, आपको

0: दुनिया वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। यशवंत बाबू, मैं मर तो सकती हूँ लेकिन अपनी बदनामी नहीं सह सकती।
1: अब अच्छा, अब

0: आजकल यूनियन में क्या चल रहा है मैं सब जानती हूँ। क्या यही सब करवाने के लिए मजदूरों की हड़ताल करवाई थी?
1: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी, अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
0: अब समझ में क्यों आएगा, यूनियन के नेता हमारे चंदे पर गुलछरे जोड़ा रहे हैं। कम से कम मैं आपको तो ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन आप भी ऐसे ही निकले।
1: देखो नारायणी, पहेलियां ना बुझाओ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
0: पहले सुना था कि आपने यूनियन के पैसे से अपने लिए नया खादी का कुर्ता पजामा खरीदा है, तब मैंने विश्वास नहीं किया।
1: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
0: लेकिन जब पता चला कि यूनियन के नेता यूनियन का पैसा खलासी लंगर में दारू में उड़ा रहे हैं, तो जाकर एहसास हुआ कि उस समय मैं गलत थी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
1: नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है नारायणी।
0: चिल्लाओ मत यशवंत बाबू, चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल सकता।
1: तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी बात का यकीन करो नारायणी, यकीन करो मेरी बात का, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है।
0: गलत फहमी? यशवंत बाबू, गलत फहमी में तो साई के सारे मजदूर आज तक जी रहे हैं। जिसे अपना मसीहा समझा, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी इंसान ने विश्वासघात किया।
1: नारायणी,
0: लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, चीख चीख कर सबको बता दूंगी। फिर देखना जिन मजदूरों के साथ तुम लोगों ने छल किया है, वही मजदूर तुम सबको साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।
1: होश में आओ नारायणी, मेरी बात का तुम यकीन क्यों नहीं करती? अच्छा एक बात बताओ, तुम यूनियन के किस नेता की बात कर रही हो जो यूनियन का पैसा दारूबाजी में उड़ा रहा है?
0: बलबीर स्वामी और कालूराम।
1: क्या, बलबीर स्वामी और कालूराम?
2: भाई बाबू,
3: बोल रहा हूँ,
2: आजकल तो हमारी पांचों उंगलियां घी में है और सिर कड़ाई में।
3: तू सच कह रहा है रे, एक कंपनी की पुरानी मशीनों के कल पुर्जे और दूसरी चीजों को चुरा चुरा कर हम बेच रहे हैं,
2: और हमें इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं।
3: और जब कंपनी के अधिकारियों को इस चोरी का पता चलेगा
2: तो उनका शक सीधे हड़ताली मजदूरों पर जाएगा।
3: रामू, तूने कुछ सुना?
2: नहीं भैया बाबू, अगर तूने सुना है तो मुझे भी बता दे।
3: हाँ सुनाता हूँ। वो क्या है कि रोज शाम अंधेरा होने के बाद कोई औरत ठाकुर साहब के पास जाती है।
2: औरत? अरे क्या बात करता है।
3: अरे 16 आने, सच कह रहा हूँ भैया, 16 आने सच।
2: लेकिन तुझे कैसे पता?
3: अरे मैंने स्वयं कई बार ठाकुर साहब के घर से एक औरत की परछाई को आते जाते देखा है।
2: अच्छा, लेकिन ये औरत हो कौन सकती है भैया बाबू?
3: अरे रामू, यही तो पता लगाना है।
2: तो ठीक है, आज रात हम ठाकुर साहब के घर के सामने वाले सागवान के पेड़ पर बैठकर निगरानी करेंगे। अरे पता तो चले कि वो चरित्रहीन औरत है कौन।
3: हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा।
2: हाँ, तो चलो पेड़ पे
3: आज रात मिलते हैं सागवान के पेड़ पे।
2: हाँ,

0: कंपनी के अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है। हमारे मजदूर हताश और निराश नहीं है। कंपनी के पास रुपए पैसे हैं, लेकिन हमारे पास हौसला है। हौसला बनाए रखो, जीत हमारी होगी। हमारा बेमियादी धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते।
1: आवाज दो, आवाज दो।
0: शांत भाइयों, शांत। हमारे बीच कंपनी का आदमी आया है, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता है।
2: सुनिए, ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं से मिलना चाहते हैं।
0: साथियों, ठाकुर साहब ने यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। लगता है कंपनी हमारे आगे झुक गई है, हमारी मांगे मानने के लिए तैयार हो गई है। यूनियन की ओर से मेरे साथ कालूराम और यशवंत ठाकुर साहब से मिलने जा रहे हैं। तब तक आप लोग शांतिपूर्वक यहीं पर बैठ जाइए। आओ यशवंत,
3: चलो आओ कालूराम। क्या फैसला हुआ था?
4: देखिए, कंपनी के अधिकारियों की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि हम 60 मजदूरों को परमानेंट करने के लिए तैयार।
5: क्या? सिर्फ 60?
3: 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60 ठाकुर साहब?
5: सिर्फ 60?
4: हाँ भाई, सिर्फ 60। इससे ज्यादा हमारे लिए संभव नहीं है।
6: ठीक है, ये प्रस्ताव हमें लिखित रूप में दे दीजिए।
4: ये भी संभव नहीं है।
6: क्यों?
4: कंपनी लिखकर नहीं दे सकती।
5: कमाल है, ये क्या हिमाकत है? कंपनी अपना ही फैसला लिखकर देने में क्यों आनाकानी कर रही है?
4: हाँ, देखिए, समझने की कोशिश करिए। कंपनी के पास हजारों विभाग हैं, इस तरह लिखकर देना बहुत मुश्किल काम है।
3: देखिए ठाकुर साहब, इस तरह तो फैसला हो नहीं सकता।
5: नहीं हो सकता
4: तो ठीक है, करो हड़ताल। एक साल दो साल तक हड़ताल करते रहो, आखिर में हम ये केस सरकार के हवाले कर देंगे।
3: क्या
6: है? ये। चलो भाइयों, हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
3: हाँ।
6: कंपनी को यूनियन के सामने झुकना होगा।
3: हाँ,
6: झुकना होगा कंपनी को यूनियन के सामने। यशवंत कालू, चलो यहाँ से।
3: चलो आप अलविदा भाई,
6: चलो चलो यहाँ से।
3: मेरे ख्याल से हम लोगों को ठाकुर साहब की बात मान लेनी चाहिए।
5: अरे यशवंत, तू अभी नरम बांस है। अरे यही उम्र है कि तुम पके बांस की तरह अपने आप को ढाल सकते हो।
7: यशवंत भाई, यशवंत भाई।
3: हाँ,
7: जरा इधर तो आना।
3: अब क्या बात है लीचू?
7: भयानक दिन आएगा यशवंत भाई, बहुत ही भयानक दिन। तुम लोगों को नदी की बालू में जिंदा दफना देंगे लोग।
3: क्या क्या कहा लीचू? क्या हुआ रामू? क्या?
8: अरे भैया बाबू, चींटियों और मच्छरों ने काट काट के सारा शरीर लाल कर दिया। दर्द के मारे बुरा हाल है भैया।
5: वैसे एक बात बताओ रामू, यूनियन ने भी अच्छा काम दिया है कि निगरानी करो कि कोई औरत कंपनी के किसी दलाल के पास तो नहीं जाती है।
8: और अगर जाती है तो उसे पकड़ कर मार मार कर हड्डियां तोड़ देने का भी आदेश है।
5: और दारू की बोतल भी नहीं देंगे यूनियन वाले, कहते हैं कि ये हमारा फर्ज है।
8: अरे दारू तो हमें ठाकुर साहब से मिली जाती है, और ठाकुर साहब का ही आदेश है कि हम दोनों यूनियन से मिलते रहे।
5: हाँ?
8: ताकि उन्हें हमारे जरिए यूनियन की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।
5: हाँ? हमें मच्छरों से कटवा कर औरतों की रखवाली पर लगा दिया, खुद नाक बजा बजा कर सोते रहते।
8: अरे भैया बामू, कहीं वो औरत पार्वती तो नहीं? अरे वो ही भृगु की बहन।
5: वो सुना है कि वो लोगों को खराब कर रही है।
8: अब तो तेरा मतलब है कि ठाकुर साहब के पास पार्वती ही आती होगी।
5: अरे क्यों नहीं आ सकती वो?
8: अब हवा आ तो सकती है, आज उसे घसीट कर साई के बालू तक ले जाऊंगा।
5: साई के बालू तक ले जाऊंगा? अरे कैसे ले जाएगा?
8: अरे कैसे का क्या मतलब?
5: पुलिस की सीटी सुनी तो नहीं? अरे देखो नहीं, चार और बंदूकधारी पुलिस बैरे पर है।
8: अरे साई के उस पार तक मुंशीगंज में आने वाली सड़क पर भी पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा है भैया।
5: रामू भाई, एक दिन साई के बालू के पास पार्वती को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा था, तुरंत सती सावित्री बन गई भाई, गाली देने लगी। अगर आज हाथ लग गई ना तो रामू भैया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं,
8: मैं भी नहीं।
5: लेकिन उसे साई की बालू पर लेकर नहीं जाऊंगा। क्या पता यूनियन वालों ने बालू में गोला बारूद रखा हो।
6: क्या हुआ
5: रामू? उधर देखो, उधर वो झाड़ी की तरफ, वो सामने वाली बबूल की झाड़ी हिल रही है।
8: हिल रही है, शायद वो आ रही है। अरे दम साधे बैठा रहे, चुप, बिल्कुल चुप, शोर नहीं कर रहा। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आएगी, एक साथ हम इस पर कूद पड़ेंगे।
5: हाँ,
9: से जान बचा ली, तो मुझे भागना होगा, नहीं तो मार भी पड़ेगी और इज्जत भी जाएगी।
8: भैया बाबू, ये तो पार्वती नहीं बल्कि नारायणी है।
5: रामू वो देख, उधर पोटली गिरी पड़ी है, देख तो पोटली, देख इसमें क्या है, क्या पता?
8: कुछ पैसे और सूखी रोटियां है बाबू।
5: सुन पैसे जेब में डाल ले, रोटी इसके हवाले कर दे,
8: ले चल।
9: लौटा मेरे पैसे, लौटा मेरे पैसे, मैं कितने भी पैसे वापस कर।
8: अरे चल नारायणी, तू भी ऐसा काम करती है? चल।
9: सुना नहीं, जानवर की औलाद, लौटा मेरे पैसे।
8: चल यहाँ से, आगे बढ़। चल।
5: देख नारायणी, ज्यादा हल्ला करेगी तो मार मार कर हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। अरे हम सफाई कर्मचारियों की इज्जत, अरे तूने तो मिट्टी में मिला दी।
9: मेरा पति बीमार है, बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, 5 दिन से भूखी हूँ मैं। क्या कभी किसी ने एक पैसा देकर मेरी मदद की? नहीं की ना। अब हड़ताल के नाम पर अन्न के दाने भी छीन रहा है। मैं कहती हूँ चुपचाप मेरे पैसे लौटा दे।
8: चुप रह।
9: मेरे पैसे। चुप। सुना नहीं, दे मेरे पैसे।
5: अरे नहीं देते। अरे करते क्या तेरे को पुलिस के हवाले? सारी जिंदगी जेल में सकती रहेगी।
8: समझ ले।
9: मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने शरीर बेचकर पैसा कमाओ, तुझे क्या? मैं कहती हूँ लौटा मेरे पैसे।
8: शरीर बेच।
10: कौन है रात के इस अंधेरे में?
6: भैया भाग ले, भाग ले।
10: देखो तो सही।
6: बाबू भाग ले।
10: नारायणी तुम इस वक्त?
11: संग्रहालय से, इसके अंतर्गत अभी आपने जंग लगी तलवार की 9वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 12:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से पहले आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा भारत के स्टार्टअप्स और नवाचार प्रणाली को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने वाले कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपये जमा करेंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में 150 जगहों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भोपाल में एक संवाद में उपलब्धियों की जानकारी दी। सीहोर के शासकीय RAK कृषि कॉलेज में सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में कल किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी गई। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैच होगा और फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
11: इस वक्त आप जुड़े हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के संग। एक बज चुके हैं, अब प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के महिला सभा अंक में शामिल है कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, गीत संगीत और खाना खजाना में आम पापड़ और करारी कुल्फी की विधि। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं रक्तदान महादान। रक्त मानव जीवन का आधार है। दुर्घटनाओं, बड़े ऑपरेशनों, कैंसर, थैलेसीमिया, एनीमिया तथा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में रक्तदान किसी व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। विज्ञान ने आज अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर ली है, लेकिन रक्त का कृत्रिम निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए रक्त की आवश्यकता केवल मानव द्वारा किए गए रक्तदान से ही पूरी की जा सकती है। बहनों, रक्तदान केवल एक सामाजिक सेवा नहीं बल्कि मानवता की सच्ची मिसाल है। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बन जाता है। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा गया है। सखियों, इस विषय पर आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 14 जून को प्रत्येक वर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। कई लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, जबकि चिकित्सकों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और कुछ ही समय में शरीर उस रक्त की भरपाई कर लेता है। रक्तदान करने से पहले स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है जिससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। यदि प्रत्येक स्वस्थ नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान करने का संकल्प ले ले तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। किसी जरूरतमंद को जीवन दान देने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन रक्तदान करके हम यह पुण्य कार्य आसानी से कर सकते हैं। बहनों, इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें, जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करेंगे। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। वे अनुभव, ज्ञान और संस्कारों का अनमोल खजाना अपने भीतर समेटे हुए होते हैं। उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष परिवार, समाज और देश के निर्माण में लगाए हैं। उनके त्याग, परिश्रम और संघर्ष के कारण ही आज हम एक सुरक्षित और सुखद जीवन जी पा रहे हैं। इसलिए उनका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दुर्भाग्यवश आज के बदलते सामाजिक परिवेश में अनेक बुजुर्ग उपेक्षा, अकेलेपन और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। कई बार उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कुछ बुजुर्गों को परिवार में पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है या उन्हें बोझ समझ लिया जाता है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। बहनों, प्रत्येक वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बुजुर्ग दुर्व्यवहार केवल किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है बल्कि हमारे सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं पर भी प्रश्नचिन्ह है। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वह समाज अपनी जड़ों से कटने लगता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जो युवा है
वे भी एक दिन बुजुर्ग बनेंगे, इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ पर बुजुर्ग सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके अनुभवों का मान करें। जो आज हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। यह हम सबको समझने की आवश्यकता है।

बहनों चर्चा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने प्यारे परिवार की। परिवार जीवन की वह पाठशाला है जहां प्रेम, त्याग, सहयोग, जिम्मेदारी और जीवन जीने की कला सीखी जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों, विश्वास और सहयोग का आधार है। परिवार ही वह स्थान है जहां व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा पाता है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता हमें अनुशासन, परिश्रम और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। दादा दादी और नाना नानी अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन की अनमोल सीख देते हैं। परिवार के बीच रहकर हम दूसरों का सम्मान करना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और मिलजुल कर आगे बढ़ना सीखते हैं। बहनों आज जब अनेक लोग रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं तब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आर्थिक मदद भेजते हैं, उसे हम प्रेषण कहते हैं। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। इन पैसों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, घर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। हालांकि आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण है लेकिन परिवार का वास्तविक आधार केवल धन नहीं बल्कि प्रेम, संवाद और भावनात्मक जुड़ाव है। परिवार के सदस्यों के बीच नियमित बातचीत, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और समय समय पर साथ बिताए गए पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तकनीक के इस युग में दूर रहकर भी परिवार के साथ जुड़े रहना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। बहनों परिवार जीवन का आधार है, खुशियों का सुंदर संसार है, तो कोशिश करें कि अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, रिश्तों को सहेजें, पारिवारिक मूल्यों को आगे बढ़ाएं और प्रेम, सम्मान तथा सहयोग से भरे एक सुखी परिवार का निर्माण करें, क्योंकि परिवार के संग ही जीवन जीने की कला पूर्ण होती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। सखियों अब कुछ बात स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण की। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों के साथ हम उसकी बात करेंगे जिस पर आप हमें सुन रहे हैं। जी हाँ, वो है हमारा प्यारा रेडियो। रेडियो सुनिए, साइकिल चलाइए और पेड़ लगाइए। एक ऐसा संदेश है जो हमें ज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण तीनों के महत्व को एक साथ समझाता है। यदि हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर बनेगा बल्कि समाज और प्रकृति को भी इसका लाभ मिलेगा। बहनों रेडियो संचार का एक सशक्त माध्यम है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ज्ञान, सूचना और जागरूकता का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। रेडियो के माध्यम से हमें समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, कृषि संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी सलाह और विभिन्न सामाजिक विषयों पर उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती हैं। रेडियो सुनने से हमारी जानकारी बढ़ती है और हम देश दुनिया की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। सखियों हमने बात की रेडियो की, अब बात करते हैं साइकिल। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। इसके साथ ही साइकिल एक पर्यावरण अनुकूल वाहन भी है क्योंकि इससे किसी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं होता। यदि छोटी छोटी दूरियों के लिए हम साइकिल का उपयोग करें तो ईंधन की बचत भी होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। पेड़ पौधे पृथ्वी के जीवनदाता हैं, वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वातावरण को संतुलित रखते हैं और धरती को हरा भरा बनाते हैं। वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति यदि वर्ष में कम से कम
एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करें तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। सखियों, रेडियो हमें जागरूक बनाता है, साइकिल हमें स्वस्थ बनाती है और पेड़ पौधे हमारी धरती को सुरक्षित बनाते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। तो हम सबको कोशिश करनी है कि इन तीनों बातों पे हम अमल करें।

सखियों बातें तो बहुत हो गईं। अब चलते हैं खाना खजाना की तरफ। गर्मी के मौसम में आता है फलों का राजा आम। आम से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं आम पापड़ बनाने की विधि। तो नोट कीजिए आम पापड़ में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए पके हुए आम 1 किलो, चीनी 2 से 250 ग्राम, काला नमक आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा हमें घी चाहिए थाली या ट्रे को चिकना करने के लिए। आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले आमों को अच्छे से धोकर उन्हें आप छील लें और उनका पल्प निकाल लें। अब इस पल्प को मिक्सर में एकदम चिकना पीस कर तैयार कर लें और अब एक भारी तले की कढ़ाई में आम का पल्प डालें और मध्यम आंच पर पकाना शुरू करें। अब आप इसमें चीनी मिला लें। लगातार मिश्रण को चलाती रहें ताकि वो तली में चिपके नहीं। जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब इसमें आप काला नमक और इलायची पाउडर मिला लें। लगभग 15-20 मिनट पकाने के बाद मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा और अब एक बड़ी थाली या ट्रे में हल्का सा घी लगा लें, उसको चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को थाली में पतली और एक समान परत में फैला लें। इसको आप 2 से 3 दिन तेज धूप में सुखाएं। रात में इसको अंदर रख दें। पूरी तरह से सूख जाने पर आम पापड़ को मन चाहे आकार में काट लें या रोल बना लें। लीजिए, खट्टा मीठा आम पापड़ बनकर तैयार है। यह आम का स्वाद लंबे समय तक संजो कर रखने का एक बेहतरीन तरीका है। सखियों, ये तो बात हुई आम पापड़ की। अब चलते हैं गर्मियों में ठंडी ठंडी करारी कुल्फी खाने की। जी हाँ, गर्मियों में ठंडी ठंडी करारी कुल्फी खाने का मज़ा ही अलग होता है। यह कुल्फी बाजार जैसी गाढ़ी मलाईदार और स्वादिष्ट बनती है। तो नोट कीजिए कुल्फी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए। हमें चाहिए दूध 1 लीटर, चीनी आधा कप, मिल्क पाउडर 3 बड़े चम्मच, मलाई आधा कप, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, कटे हुए पिस्ता 2 चम्मच। कुल्फी बनाने के लिए एक भारी तले के बर्तन में दूध को उबाल लें। दूध को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए लगभग आधा होने तक पकाएं। अब इसमें मिल्क पाउडर मिला लें और साथ ही चीनी डाल दें और इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएं। अब इसके अंदर मलाई

इलायची पाउडर और साथ ही कटे हुए पिस्ता भी डाल दें। अब गैस बंद करें और मिश्रण को ठंडा होने दें। अब कुल्फी के सांचों में इस मिश्रण को भर दें। 8 से 10 घंटे फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। लीजिए, स्वाद में लाजवाब मलाईदार और करारी कुल्फी बनकर तैयार है। तो आप बहनों, इन गर्मी में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दें अनुमति। नमस्कार।

0: महिला सभा का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
6: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
4: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं, ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी केंद्र की ये प्रस्तुति। कलाकार हैं प्रकाश चंद झा और साथी।

और लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुने ये दादरा। कलाकार एक बार फिर प्रकाश चंद्र झा और साथी।

और इसी दादरा के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम वासवानी की गाई हुई कुछ गज़लें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति है।

0: घनश्याम वासवानी की गाई हुई इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी शिवपुरी की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
5: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रति पल उसका बेनिफिट देता रहता।
4: आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा। ये रहा

ये गीत आपने सुना कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन, कल्याणपुर और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीस में आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठे।

0: उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के कसेली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा होंगे। साथ ही देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई है। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कल भारत विकास परिषद शाखा द्वारा महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए समितियों के साथ पुलिस ने बैठक की। आगरमालवा में कल आयोजित वर्चुअल कार्यशाला अनुगुंज में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मीडिएशन और विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को हैं। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्र

0: राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक

0: झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों

0: को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान है।
2: बच्चों जय हिंद।
3: जय हिंद।
2: बच्चों आ गया है रविवार, यानी खुशी, मस्ती और धमाल का दिन। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी सुषमा दीदी, लेकर आई हूँ आज आपके लिए हंसी, सीख और मनोरंजन से सजा हुआ आपका अपना कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं नन्हे नन्हे सितारों से, जिनकी मुस्कुराहट में सुनहरे भविष्य की चमक होती है और जिनके सपनों में होती है एक नए भारत की तस्वीर। तो नए दोस्तों से भी मुलाकात होगी बच्चों, पर पहले ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं? इन गर्मी की छुट्टियों में मजे कर रहे हो ना? अरे अरे, गर्मी की छुट्टियां वही ना जो बस अभी अभी खत्म होने वाली है और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है ना? पर क्या करें बच्चों, छुट्टियां है ना तो खत्म तो होगी ही, है ना? पर एक बात तो है बच्चों, समर वेकेशन होता बड़ा ही कमाल का है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नानी और दादी के घर की सैर की होगी, उनसे ढेर सारे किस्से और कहानियां सुनी होगी। तो कुछ बच्चों ने अपनी स्किल्स को सुधारा होगा, समर कैंप ज्वाइन किया होगा, तो कुछ बच्चों ने स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट और होमवर्क पूरा करने में समय बिताया होगा। सही कहा ना बच्चों? आज भी कार्यक्रम में हम हमारे दोस्तों से यही जानेंगे, लेकिन पहले बच्चों आपको बता दूं कि आज 14 जून है जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, हमारे जीवन में रक्त यानी खून कितना महत्वपूर्ण होता है? जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी हो या किसी को ऑपरेशन के दौरान ब्लड की जरूरत हो, तब रक्तदान किसी के लिए जीवन दान बन सकता है। इस दिन यानी 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है ताकि हम उन सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दे सके जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की जान बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। हालांकि आप बच्चे अभी रक्तदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे ही तो कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, है ना? बच्चों, कार्यक्रम में आज मिलेंगे कुछ नए दोस्तों से, लेकिन उसके पहले क्यों ना सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: गीत सुन लिया? बच्चों, गीत के पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ नए दोस्तों से मिलेंगे, तो चलिए मिलते हैं अपने दोस्तों से। सबसे पहले अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते दीदी, मेरा नाम महती तन्मय वैष्णव है और मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 इंदौर प्रथम पाली में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। पता है दीदी, अभी तो हमारा समर वेकेशन चल रहा है।
0: अरे वाह, अभी भी आपका समर वेकेशन चल रहा है? तो महती, ये बताओ कि स्कूल कब से शुरू होने वाले हैं आपके?
1: हमारी स्कूल वेकेशन के बाद 22 जून से खुलेगी दीदी।
0: अच्छा, 22 जून से आपके स्कूल शुरू होने वाले हैं। ये बताओ महती कि इन गर्मी की छुट्टियों में आपने क्या क्या किया, कुछ नया सीखा आपने?
1: दीदी, वैसे छुट्टियों में कुछ नया तो नहीं सीखा, परंतु मुझे लिखने की जो रुचि है उसमें थोड़ा विकास करके कुछ नई कविताएं जरूर लिखी है। और तो और दीदी, इन छुट्टियों में मैंने पहली बार छोटे छोटे गद्य लिखने से एक कदम आगे बढ़ाते हुए श्री वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा लेकर एक कहानी लिखी।
0: क्या बात है, वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर आपने कहानी लिखी है, तो हमारे दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ बताओ महती।
1: जी दीदी, इस कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन त्रेता युग का। इसमें मैंने घटनाक्रम पूर्णतः श्री वाल्मीकि रामायण से लिया है, पर अपनी इमेजिनेशन का भी यूज किया है। इसके माध्यम से मैंने श्री राम जी तथा उनके तीनों अनुजों के एक दूसरे के प्रति अधिक भ्रातृ प्रेम के लिए मेरी श्रद्धा को शब्द दिए हैं। साथ ही साथ रक्षाबंधन की विधि का भी इस कहानी में मैंने बड़ा क्रिएटिव यूज किया है। जैसे जब जब भी भाइयों पर संकट आता तो उनको अपने रक्षा सूत्र के ढीले पड़ जाने से मानो एक आभास हो जाता। बाल्यावस्था, गुरुकुल के दिन, विवाह के पश्चात, वनवास, युद्ध, अयोध्या पुनरागमन, देवी सीता परित्याग व भूमि प्रवेश और अंत में भाइयों की सरयू जल समाधि, इन सब में मैंने उन चारों भाइयों तथा रक्षाबंधन को मुख्य विषय बनाकर यह कहानी लिखी है।
0: क्या बात है महती, वैसे सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इंतजार होगा आपकी इस कहानी का। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि इन गर्मी की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने गए थे या नहीं, या फिर बस कविताओं को, कहानी को लिखने में ही समय बिताया?
1: हाँ दीदी, छुट्टियों में मैं मेरे नाना नानी के घर गई थी। वहाँ हम सब ने खूब मजे किए। और अब जब स्कूल शुरू होने वाला है तो 10th क्लास में मेहनत करने के लिए एनर्जी पूरी फुल है। मेरा मानना है कि बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को प्रेशर और डर के साथ नहीं, पर फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। आखिर बोर्ड्स एक वार्षिक परीक्षा ही तो है। मुझे 10वीं कक्षा में आने पर कैसा महसूस हो रहा है, मैंने उस पर एक कविता लिखी है। क्या मैं आपको वो सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुना सकती हूँ महती। अब आप 10वीं में पहुंच गई हो, नई नई क्लास है, नया सब कुछ है, बोर्ड्स की परीक्षाएं हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे अक्सर 10वीं की बोर्ड्स परीक्षाओं से डर जाते हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर कविता लिखी है तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे, सुनाओ जरा।
1: इस कविता का शीर्षक है देखो अब आ गई 10वीं में। यह कविता कुछ इस प्रकार है। छोड़ दिया जब जन्म स्थली को और पहुंची अपनी कर्म स्थली को, थी मैं केवल पहली में, देखो अब आ गई 10वीं में। जन्मी केवल 15 वर्ष विगत हूँ, तौर तरीकों से बस थोड़ी ही अवगत हूँ। छिपा है बचपना अभी भी मन में, देखो अब आ गई 10वीं में। कोमल थे जो झुंझुना थामने वाले हाथ, कठोर बने वही कलम चलाने वाले हाथ। कहां 10 माह की नवजात थी मैं माँ की गोद में, देखो अब आ गई 10वीं में। काल चक्र से जूझूं आयु मेरी बढ़ती गई, 10वीं के भैया दीदी प्रति इज्जत भी बढ़ती गई। पर अब देखने वालों से दिखने वालों की हूँ श्रेणी में, देखो अब आ गई 10वीं में। कहानियों की दुनिया और चित्र बड़े चित भावन से सम्मुख विविध विषयों के लगने लगे हैं वामन से। हुई गजब की वृद्धि मेरे मन मस्तिष्क में, देखो अब आगे 10वीं में। आते ही बज गया है परिणाम की आकांक्षाओं का डंका, हो जाती है मन में मेरे कभी घनी सी शंका। पर डरना क्या जब मेहनत, निश्चय और अपनों का साथ है मेरे जीवन में, देखो अब आ गई 10वीं में। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आपने लिखी महती, और हम सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो 10वीं का बहुत सारा प्रेशर होता है बच्चों के दिलो दिमाग पर, लेकिन आप इस मानसिकता के साथ 10वीं कक्षा में प्रवेश कर रही हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत सारी जिज्ञासा है, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना, तो तालियां तो बनती है ना। महती कविता तो आपने बहुत अच्छी लिखी है और सुनाई भी बहुत ही बढ़िया अंदाज में है। अब हमें ये बताओ महती कि इन गर्मी की छुट्टियों में समर असाइनमेंट मिले थे आपको?
1: जी बिल्कुल दीदी, समर असाइनमेंट्स तो मिले ही थे और मैंने कंप्लीट कर लिए।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरे भी कर लिए। बहुत अच्छा लगा महती आपसे बात करके और आपकी कविताओं को सुनकर। अब मिलते हैं एक और हमारे नन्हे सितारे से, तो अपना नाम बताइए।
2: दीदी मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: आशुतोष, तो आशुतोष आपके स्कूल कब से शुरू होने वाले हैं?
2: दीदी मेरे स्कूल 16 जून को स्टार्ट होने वाले हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताओ आशुतोष, आपको इन गर्मी की छुट्टियों में कुछ असाइनमेंट मिले या नहीं?
2: दीदी मुझे इन गर्मियों की छुट्टी में बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले थे और मैंने अपना दिमाग लगा के स्टार्टिंग में ही सारे असाइनमेंट्स पूरे कर लिए, जिससे मैं बाकी पूरी गर्मियों की छुट्टी में आराम से रह सकूं, खेल सकूं।
0: तो असाइनमेंट ही पूरा करते रहे या कहीं बाहर घूमने भी गए थे आशुतोष?
2: दीदी इन गर्मियों की छुट्टी में हम बाहर घूमने गए थे और मुझे बहुत मजा आया और मैंने तो डांस भी सीखा है।
0: क्या बात है, डांस भी सीखा? भाई वो तो हमें देखना ही होगा, मगर पहले ये बताओ आज अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाले हो?
2: दीदी मैं अब आपको एक कविता सुनाता हूँ जो हम सभी बच्चों की मन के भाव बताती है।
0: सुनाओ।
2: गर्मी की छुट्टियां बीत गईं, मस्ती वाली घड़ियां बीत गईं, नानी का घर आमों का स्वाद अब बन गए हैं मीठी याद। सुबह सुबह अब उठना होगा, स्कूल का बस्ता उठाना होगा, दोस्तों से फिर मिलना है, नई कक्षा में खेलना है। थोड़ी खुशी थोड़ा है गम, छुट्टियों की यादें हैं संग, खेल कूद अब कम हो जाएंगे, होमवर्क फिर से आ जाएंगे, नई किताबें नए सपने, सीखेंगे हम अब कितने अपने, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, ज्ञान के दीपक फिर जलेंगे। छुट्टियों को कहे अलविदा, स्कूल को कहे नमस्कार, खुश होकर हम कदम बढ़ाएं, उज्जवल हो अपना संसार।
0: कविता तो आपने सुनाई आशुतोष, मगर ऐसा लग रहा है कि स्कूल खुलने से आप थोड़े कम खुश हैं, तो खुशी हो रही है या नहीं आपको?
2: दीदी अच्छा तो लग रहा है थोड़ा कि अब नए वापस से दोस्त मिलेंगे और नए दोस्त भी बनेंगे और पुराने दोस्त वापस मिलेंगे जो 2 महीने से नहीं मिले थे, पर बुरा भी लग रहा है कि अब लेट उठने को नहीं मिलेगा, स्कूल वापस स्टार्ट होंगे तो वापस सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मुझे और फिर से वही भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम देने पड़ेंगे, इसलिए मिली जुली सी फीलिंग्स है। अच्छा भी लग रहा है पर ज्यादा बुरा लग रहा है और मेरे हिसाब से सबको ही बुरा लगता होगा जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होती होंगी।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि गर्मी की छुट्टियां जैसे ही खत्म होती है ना, तो सारे बच्चों को बुरा लगता है। खुशी तो होती है कि हम फिर से वापस स्कूल जाएंगे, अपने पुराने नए दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर से दादी नानी का घर घूमना, देर तक सोना, ये सब कुछ हमें याद आता है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी जो है वो चलने का नाम है और समय जो है कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो हमें भी समय के साथ ही चलना पड़ता है। तो अच्छा है कि नया सत्र फिर से शुरू होने वाला है, ताकि आप अगली कक्षा में जल्दी से पहुंचे, जल्दी जल्दी परीक्षाएं दे और फिर अगली कक्षा में पहुंचे, है ना? तो ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं नई नई कक्षाओं में पहुंचने के लिए और फिर से स्कूल शुरू होने के लिए। अभी यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, दोस्तों से मिलेंगे, मगर क्यों ना पहले सुन लेते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

0: अच्छा बच्चों, अब हमारे साथ है एक और प्यारी सी दोस्त, तो चलो उनका नाम जानते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकृति चौहान है और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, तो प्रकृति ये बताओ आज क्या बताने वाली हो दोस्तों को?
1: आज मैं आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हर साल 14 जून को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में बहने वाला रक्त यानी खून हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी दुर्घटना, बीमारी या ऑपरेशन के समय लोगों को अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसे समय में रक्तदान किसी के लिए जीवनदान बन जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रक्त यानी ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, इसे केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वेच्छा से दान कर सकता है। इसलिए रक्तदान करने वाले लोग वास्तव में किसी की जान बचाने में मदद करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और रक्तदाताओं का सम्मान करना है। इस दिन उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जाता है जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं। दोस्तों, हम बच्चे अभी रक्तदान नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए एक निश्चित आयु और स्वास्थ्य संबंधी नियम होते हैं, लेकिन हम इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। सोचिए, यदि किसी अस्पताल में कोई मरीज रक्त की कमी से जूझ रहा हो और समय पर उसे रक्त मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। उस मरीज और उसके परिवार के लिए वह रक्तदाता किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। रक्तदान के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान सुरक्षित माना जाता है और कुछ समय बाद शरीर फिर से आवश्यक रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है। दोस्तों, हमें बचपन से ही दूसरों की सहायता करने की भावना विकसित करनी चाहिए। मदद केवल पैसे से नहीं होती बल्कि जागरूकता फैलाकर और अच्छे संदेश देकर भी की जा सकती है। तो दोस्तों, आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम हमेशा मानवता, सेवा और सहयोग की भावना को अपने जीवन में अपनाएंगे और जब हम बड़े होंगे तब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छी बात हमें प्रकृति ने बताई दोस्तों कि जब हम किसी को रक्तदान करते हैं ना, तो न केवल जीवन दान मिलता है बल्कि हमें भी अच्छा करने की सीख मिलती है, अच्छा करने की खुशी मिलती है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे काम जब आप करते हैं या किसी को और को प्रेरित करते हैं तो वो काम आपके जीवन को हमेशा सही राह दिखाते हैं। तो बहुत अच्छी बात हमें प्रकृति ने बताई। अब हमारे साथ एक और प्यारी सी नन्ही सी दोस्त है, तो चलो उनसे भी कुछ सुन ले।
2: मेरा नाम है तनिशी भावसार और मैं कक्षा 2वीं में पढ़ती हूँ। दीदी, मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ।
0: अरे वाह तनिशी, आप दूसरी कक्षा में पढ़ती हो और हमें एक कविता सुनाने वाली हो, तो सुनाओ कविता।
2: मेरा बंदर मस्त कलंदर, पल में बाहर पल में अंदर, मेरा घोड़ा बड़ा निगोड़ा, कभी न पीता पानी थोड़ा, मेरी बिल्ली बोले म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ म्याओ, दूध मलाई चट कर जाऊं, मेरा बाजा करे तकाजा, पर लिख लो तो बनोगे राजा, मेरा तोता पंख भिगोता, राम राम रट के खुश होता, मेरा हाथी सबका साथी, लेकिन उसकी सूंड डराती, मेरी गुड़िया जादू की पुड़िया, रूप बदल बन जाती बुड़िया, मेरा डामी रंग बदामी, पाव उठाकर करे सलामी। थैंक यू।
0: बहुत अच्छी कविता हमें तनिशी ने सुनाई, बहुत प्यारी कविता।
3: मेरा नाम समृद्धि नागर है, मैं कक्षा 3rd में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा समृद्धि, मुझे ये बताओ आपके स्कूल कब से खुलने वाले हैं?
3: मेरे स्कूल 16 जून से शुरू होने वाले हैं।
0: और ये बताओ इन गर्मी की छुट्टियों में आपने क्या सीखा?
3: जी हाँ, मैं छुट्टियों में डांस सीखे है।
0: अच्छा, आपने डांस सीखा है, और जो गर्मी की छुट्टियों में मिलने वाला समर असाइनमेंट होता है आपने पूरा कर लिया?
3: जी हाँ, मैंने अपना असाइनमेंट पूरे कर लिए।
0: तो इन छुट्टियों में मजे आए आपको?
3: जी हाँ, मुझे छुट्टियों में बहुत बहुत ज्यादा मजे आए।
0: तो स्कूल शुरू होने वाले हैं, तो खुशी है या नहीं आपको?
3: जी हाँ, मेरे स्कूल शुरू होने वाले, उस चीज की मेरे को बहुत बहुत ज्यादा खुशी है।
0: खुशी है, खुशी होनी चाहिए, है ना? तो क्या सुनाओगी आज?
3: मैंने छुट्टियों में कविता सीखी है,
0: तो सुनाओ हमें।
3: ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, मुन्नी को चीर कर चल गई है पैर पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर हवा रानी बस कर, अगर तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी। थैंक यू।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी कविता हमें समृद्धि ने सुनाई। अब आगे आप दोस्तों को इंतजार होगा गीत का, तो चलो सुनवा देती हूँ आपको एक और बहुत प्यारा सा गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जून का महीना चल रहा है, गर्मी अभी भी अपने पूरे जोरों पर है और हम सब बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि इस गर्मी में पेड़ पौधों और पक्षियों का क्या हाल होता होगा? सोचा है बच्चों, जिस तरह से हमें ठंडी हवा, छांव और पानी की जरूरत होती है ना, उसी तरह से प्रकृति को भी हमारी थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। तो क्यों ना हम इस बार बारिश आने से पहले हम एक संकल्प लें एक पौधा लगाने का, और साथ ही साथ अपने घर की छत, बालकनी या फिर आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखने का। बच्चों याद रखिए, एक पौधा धरती को हरा भरा बनाता है। तो बच्चों, बारिश से पहले पौधा रोपण की तैयारी करनी है, आप अपने स्तर पर कहीं ना कहीं अपने घर के आंगन में या फिर अपने पास के बगीचे में छोटे छोटे पौधे रोपित करिए, ताकि जब बारिश का पानी उन पर गिरे ना, तो वो पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक दिन बड़े होकर छांव दे, फल दे और खूब सारी बारिश दे। तो बच्चों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए सुषमा दीदी का टाटा, बाय बाय और जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: बच्चों का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के केसली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की किस्त जारी करेंगे। 37वीं किस्त के रूप में 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले देश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के शुरुआती मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मुकाबला शाम 7 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेब पर हमारी ये सभा संपन्न हो, उससे पहले हम आपको जानकारी देते हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण आप सुन सकते हैं शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 से। और इस बीच आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत, इसे आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से। और इसके पश्चात पुनः ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026

के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच के समापन तक आप सुन सकते हैं। ये थी उन कार्यक्रमों की जानकारी जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। DTH पर इस बीच प्रसारण जारी रहेगा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ राजेंद्र कृष्ण के बोलते कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्या नगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

तो ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और हेमलता की आवाज़ें थी। अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है, दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था, शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों चुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी, कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम?
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है, क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज।
1: हाँ गांधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक हैं, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज हैं। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण।

0: युद्ध का प्रथम दिन है गंधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं यह निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुर

दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद। गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रहे।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम ने ही महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा, तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गई। दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो कांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
3: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
3: देवी गांधारी,
0: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है, फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है, किंतु कृष्ण जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
3: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुष्टासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
3: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है, तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ जाओ, मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृ कुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गुष्टी को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी।
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना। और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी। तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं।
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया। शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया। यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते।
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए। जो तुम्हें अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने
0: कुरुवंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति जली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: गांधारी, देखो, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: कंधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
1: महाराज,
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है, आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है तो उसका परित्याग क्यों किया जाए। चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लहरा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: कभी छाए।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहाँ जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना रे, हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरिदर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरिदर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा।
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी। हम गाते थे।
2: अच्छा।
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें?
3: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे। हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी। आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली,
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में। तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी। हाँ
0: अच्छा
1: ठीक है, मतलब
0: हाँ
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ
0: जी
1: बैठ के
0: जी
1: हंसी मजाक चलती
0: हाँ
1: थी,
0: हाँ हाँ
1: और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी जैसे
0: जी
1: घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो, पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा, बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी। हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जागृत हुए। जी
1: कि
0: जी
1: भाई ये काम आप क्यों
0: हाँ,
1: करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी हो
0: अपनी
1: गई थी,
0: दुनिया बन चुकी थी, आपकी भी अपने सपने थे, अपने
1: तो
0: शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अब अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी, जाएगी बाहर जाके। मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी।

0: बात सच है।
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता, और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है कि
0: खूबसूरती के
1: मेरे
0: साथ।
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
0: बोलो
1: तुम
0: तुम
1: कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो।
1: बोलो तुम कौन
0: आहा, क्या
1: हो।
0: बात है,
1: हाँ,
0: क्या बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले,
0: जी।
1: कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ,
0: आहा।
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार
0: तुम्हें?
1: पसंद है। तो
0: बहुत
1: ये भी कितना सुंदर सुंदर से गीत है,
0: बहुत स्वीट।
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है ये,
1: हर
0: हर
1: पल के। तो
0: मौके
1: ये
0: के गीत
1: रोमांटिक
0: है।
1: गाने भी उन्होंने
0: जी
1: लिखे,
0: जी
1: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही
1: जी
0: और बात भी की
1: जी
0: हमने।
1: जी बिल्कुल
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला,
1: मौका
0: और फिर
1: मिला।
0: उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी, और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो
1: वाह
0: प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन,
1: क्या बात
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो,
1: हाँ
0: मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम।
1: तुम हो, क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत कितनी
0: रुमानियत
1: गहरी गहरी
0: कितनी
1: तरीके से
0: गहरी,
1: लिखी
0: तो
1: गई।
0: मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: है उसके
0: उसके
1: कुमकुम हो,
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर। जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत
0: हाँ
1: ही
0: हाँ
1: खूबसूरत तरीके से
0: तो
1: प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है।
1: जी, और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा,
1: जी
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में।
1: जी
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के
1: जी
0: लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे,
1: किस बात पे।
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे।
1: जी
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हीलचेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हीलचेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए।
1: जी
0: प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं
1: नहीं
0: चलते
1: आते।
0: हैं, वो
1: जी
0: वहीं खड़े रहते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम
1: जी
0: था, और वो
1: जी
0: कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया, उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं।
1: जी
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए, यश चोपड़ा जी वहाँ खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया,
1: जी
0: वो भी ऑडियंस में थे।
1: जी और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप।
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए,
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत
0: बहुत
1: गीत।
0: सुंदर।

0: थे, लेखन नहीं करते थे तो क्या करते थे, उनके और क्या-क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ
1: हाँ, तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जांबू, जांबू समझते हैं आप, सफेद वाले जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जामुन, हाँ काले
0: हाँ
1: नहीं सफेद,
0: सफेद हाँ
1: खैर एनीवे वाटर एप्पल या ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए, तो
0: अच्छा।
1: वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कढ़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता
1: हाँ,
0: होगा
1: तो
0: आपको।
1: सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के उनको जैसे लगवा रहे थे, तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप, इतनी
0: अच्छा,
1: मजबूत है
0: क्या बात है।
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया है।
1: हाँ
0: जी मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज़ दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया,
0: जी
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं
0: जी
1: ना
0: बिल्कुल,
1: लक्ष्मी के,
0: नवरात्रा में मनाते
1: हाँ
0: हैं, दीपावली में।
1: दीपावली में। तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था, मुझे,
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती
1: हाँ,
0: थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मज़ा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ।

0: हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली,
1: जी
0: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं,
1: हाँ
0: उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने
1: जी
0: में।
1: जी जी
0: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ
1: आपकी
0: होता है
1: डेस्टिनी
0: आपके,
1: में।
0: क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी,
1: अच्छा
0: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
1: जी जी
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो
1: जी
0: उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
1: मकसद मिल गया
0: मकसद
1: आपको।
0: मिल गया।
1: जी
0: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब गुरु बनते हैं ना, तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और
1: बिल्कुल
0: आपका जीवन बदल जाता
1: बदल
0: है।
1: जाता है।
0: सुख

0: तो कभी था।
1: मितुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही।
2: जी जी एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
1: ड्राइंग
2: करते
1: तो
2: रहे।
1: आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है वो।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
1: अनंत है,
2: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग
2: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहां बंध जाते हैं जी, लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
2: वही तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
2: आपको
1: आर्ट...
2: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी,
2: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी
2: तो ज़्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है,
2: नहीं।
1: अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है।
2: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहां पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
2: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं
1: जी। तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
2: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की
1: बात कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत
2: जी।

श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजना चाहते हैं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। प्रारंभ में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले के केसली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा को लगभग 151 करोड़ रुपये के लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत है, इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इनके माध्यम से 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के 30 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस। साथ ही हमारा दूसरा विषय है जल को व्यर्थ न बहाएं, करें संरक्षित। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व। वार्ताकार है कनक श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना तथा रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान का सम्मान करना है। रक्त मानव जीवन का आधार है और इसका कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। यह दिन महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के अवसर में मनाया जाता है। उन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अधिक से अधिक लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार रक्त की कमी के कारण मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है। यदि समाज में अधिक लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतः कुछ महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर नया रक्त बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इससे रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की नियमित जाँच भी हो पाती है। साथियों, समाज में रक्तदान को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या फिर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वास्तव में चिकित्सकीय मानकों के अनुसार किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। डॉक्टरों की देखरेख में रक्तदान करने से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, इसलिए लोगों को इन भ्रांतियों से बाहर निकलकर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर, रैलियां, संगोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के द्वारा भी लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। युवाओं की भागीदारी इस अभियान को और अधिक सफल बना सकती है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मानवता, सेवा और परोपकार की भावना को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण दिवस है। रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। हमें इस दिवस के महत्व को समझते हुए स्वयं रक्तदान करना चाहिए तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सच ही कहा गया है कि रक्तदान महादान है, यह न केवल किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, बल्कि समाज में सहयोग और मानवता की भावना को भी मजबूत बनाता है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक स्वस्थ नागरिक को नियमित रूप से रक्तदान कर मानव जीवन की रक्षा में अपना अहम योगदान देना चाहिए। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय जल को व्यर्थ न बहाए करें संरक्षित पर चर्चा करने का। दोस्तों जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा जीवित प्राणी जल पर निर्भर हैं। इसलिए जल को जीवन का आधार कहा जाता है। साथियों आज बढ़ती जनसंख्या औद्योगिकीकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में जल को व्यर्थ बहाने की बजाय उसका संरक्षण करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। साथियों जल हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसका उपयोग पीने भोजन बनाने स्नान करने खेती करने तथा विभिन्न उद्योगों में होता है। कृषि उत्पादन पूरी तरह जल पर निर्भर करता है। यदि जल की उपलब्धता कम हो तो खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसके अलावा स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसलिए जल का महत्व किसी भी अन्य प्राकृतिक संसाधन से कम नहीं है। साथियों वर्तमान समय में विश्व के अनेक देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नदियां तालाब झीलें सूखती जा रही हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि हम सभी जल के महत्व को समझें और उसे संरक्षित करें। दोस्तों जल संरक्षण के लिए हमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें पानी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। नल को खुला न छोड़ें और रिसाव वाले नलों को तुरंत उनकी मरम्मत करवाएं। दोस्तों वर्षा जल संचयन को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि वर्षा का पानी भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। कृषि क्षेत्र में टपक सिंचाई स्प्रिंकल जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे पानी की बचत हो सके। उद्योगों में जल पुनर्चक्रण की व्यवस्था अपनानी चाहिए। साथ ही नदियों तालाबों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। साथियों जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही पानी बचाने की आदत सिखानी चाहिए। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में अपना योगदान देगा तभी जल संरक्षण का लक्ष्य सफल हो सकेगा। साथियों जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। उसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज की छोटी छोटी बचत भविष्य की बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यदि हम अभी से जल संरक्षण के प्रति सजग हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। दोस्तों हमें संकल्प लेना चाहिए कि जल है तो कल है और जल की प्रत्येक बूंद का सम्मान करते हुए उसका संरक्षण हम करेंगे। साथियों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं कनक श्रीवास्तव।
1: दोस्तों आइए हम आधुनिक परिवेश में योग का महत्व इस विषय पर चर्चा करें। इससे पहले हम योग क्या है इसको समझ लेते हैं। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ अर्थात जुड़ना। व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है योग। योग ऐसा ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। प्राचीन काल में योग को अपनाने वालों को योगी कहा जाता था। जो योग मार्ग पर चलते हुए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करते थे इसी अवस्था को मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। योग विद्या अति प्राचीन है। भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना जाता है। सप्तऋषि के द्वारा योग को आगे बढ़ाया गया। कालांतर में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने योग के 8 अंग बताए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि। योग कई प्रकार का है जैसे कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग क्रिया योग आदि। मित्रों अलग अलग संप्रदायों परंपराओं दर्शनों धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते योग का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनमें ध्यान योग मंत्र योग लय योग राजयोग जैन योग बौद्ध योग कुंडलिनी योग हठ योग पतंजल योग आदि सम्मिलित हैं। मित्रों, आधुनिक समय में योग को मुख्य रूप से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए अपनाया जा रहा है। इस दिशा में अनेक अनेक व्यक्ति, संस्थाएं प्रयासरत हैं। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं और लगातार कर रहे हैं। बीमारियों से बचाव के लिए एवं उपचार के लिए लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं। योग का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में जागरूकता आ रही है, क्योंकि वर्तमान समय में योग एक अनिवार्य आवश्यकता समझ में आ रही है। उसका कारण है कि आज व्यक्तियों को स्वस्थ रहना एक चुनौती लग रहा है। लगभग 80% लोग किसी बीमारी की चपेट में हैं। कोई ना कोई दवा ले रहा है, क्योंकि जीवन शैली आज स्वास्थ्य के अनुकूलन नहीं है। खान पान जहरीला हो गया है। अनाज, सब्जी, फल सभी में कीटनाशक का जहर मिला हुआ है। यहाँ तक कि हवा और पानी जैसे प्रमुख चीजें भी शुद्ध नहीं रह गई हैं। इसी प्रकार कई प्रदूषण के चलते हवा दूषित हो गई है और जल प्रदूषित हो गया है। अतः स्वस्थ रहना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में अब लग रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना अनिवार्य हो गया है, और इसके लिए सर्वोत्तम साधन है योग। योग का नियमित अभ्यास करने से, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज आवश्यकता है कि जगह जगह स्कूलों में, पार्कों में, मैदानों में, संस्थानों में योग शिविर लगाए जाएं और लोगों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित किया जाए। इस दिशा में सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु ये जागरूकता प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। समाज, संस्थाएं सभी एकजुट होकर योग का प्रचार प्रसार करें और अपना योगदान दें, तभी हम निरोग रह सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को विरासत में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की विद्या एवं योग विद्या हम उन्हें दे सकते हैं। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 69वें सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्मा संयम एवं पूर्णता की एक आत्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तथा ये स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावाही दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एक तत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है, तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। उद्बोधन देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करें। परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने अपने सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया, और तभी से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। मित्रों, योग का अभ्यास सही विधि से और नियमित रूप से करना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आसपास का वातावरण साफ रखें, शरीर और मन को शुद्ध रखें। योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके करना चाहिए। योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्प आहार लेकर ही करना चाहिए। योग अभ्यास मल मूत्र विसर्जन के पश्चात ही करें। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी या कंबल अथवा योग मैट का उपयोग करना चाहिए। आरामदायक वस्त्र पहनकर योग अभ्यास करें, ताकि शरीर की गतिविधि आसानी से हो सके। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी या तनाव की स्थिति में योग ना करें। यदि कोई पुराना रोग है, BP या हार्ट समस्या है, तो चिकित्सक या योग विशेषज्ञ से परामर्श लें। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग विशेषज्ञ से सलाह के बाद ही योग अभ्यास करें। अभ्यास के समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। योग अभ्यास के दौरान श्वास को रोकना नहीं चाहिए, जब तक कि ऐसा करने को कहा नहीं जाए। श्वास प्रश्वास हमेशा नासिका से ही लें। जब तक कि विशेष रूप से कहा ना जाए, शरीर में किसी प्रकार का झटका प्रदान ना करें, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही योग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें, अच्छे परिणाम आने के लिए कुछ समय लगता ही है, इसलिए लगातार नियमित अभ्यास करते रहें। हर आसन को सीमाएं एवं निर्देश अनुसार ही करें। योग सत्र का प्रारंभ प्रार्थना से करें और समापन शांति पाठ से करें। इससे मस्तिष्क एवं मन को शांति का वातावरण मिलता है। अभ्यास के बाद 20 मिनट के बाद ही स्नान करें और 20 मिनट के बाद ही आहार लें, तुरंत ना लें। शाकाहारी भोजन ही श्रेयस्कर है। अब हम ये देखते हैं कि योग किस प्रकार सहायता कर सकता है। मित्रों, योग सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करने का साधन है। वर्तमान समय में हुए चिकित्सा शोधों ने योग से होने वाले कई शारीरिक और मानसिक लाभों के रहस्य प्रकट किए हैं। यही नहीं, लाखों लोग अभ्यासियों के अनुभवों को आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि योग कई प्रकार से हमें लाभान्वित करता है। योग में शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकार अभ्यास है। मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और जीवन शैली संबंधी कई प्रकार की समस्याओं से बचाव होता है। योग अवसाद, थकान, चिंता संबंधी विकारों और तनावों को दूर करने में सहायक है। योग अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, विचारों की स्पष्टता और मनोबल बढ़ता है, स्मृति बढ़ती है, पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए तरोताजा करता है। ध्यान से हम आत्म अनुभूति करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि योग शरीर एवं मन के निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है।
0: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर। वार्ताकार थी कनक श्रीवास्तव। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य का विकास उसके विचारों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की सोच व्यापक सकारात्मक और प्रगतिशील होती है वह जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। इसके विपरीत संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति के विकास में बाधा आती है। संकीर्ण मानसिकता का अर्थ है सीमित दृष्टिकोण रखना, दूसरों के विचारों का सम्मान न करना तथा जाति धर्म भाषा क्षेत्र या व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर भेदभाव करना। ऐसी सोच न केवल व्यक्ति के विकास में बाधक बनती है बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करती है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल अपने हितों और विचारों को ही महत्व देता है। वह नए विचारों को स्वीकार करने से बचता है तथा दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं करता। ऐसे लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं और अपने पूर्वाग्रहों में बंधे रहते हैं। परिणाम के स्वरूप उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। दोस्तों संकीर्ण सोच व्यक्ति की सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता को कम कर देती है। जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात को सही मानता है वह नए अनुभवों और ज्ञान से वंचित रह जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए खुली सोच सहनशीलता और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता आवश्यक होती है। संकीर्ण मानसिकता इन गुणों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इससे व्यक्ति आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी खो सकता है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता समाज में भेदभाव असहिष्णुता और संघर्ष को जन्म देती है। समाज का विकास तभी संभव है जब लोग मिलजुल कर कार्य करें तथा एक दूसरे का सम्मान करें। संकीर्ण सोच सद्भाव को नष्ट करती है और प्रगति के मार्ग में रुकावट बनती है। ऐसे में आवश्यक है कि संकीर्ण सोच को न रखा जाए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उनके नागरिकों की सोच पर निर्भर करती है। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में संकीर्ण मानसिकता का त्याग आवश्यक है। साथियों संकीर्ण मानसिकता से दूर रहने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता प्रदान करती है तथा उसके विचारों को व्यापक बनाती है। इसके अलावा हमें विभिन्न संस्कृतियों परंपराओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। परिवार और विद्यालय बच्चों में मानवता समानता और भाईचारे के संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति समाज और राष्ट्र तीनों के विकास में एक बड़ी बाधा बन जाती है। यह हमारी सोच को सीमित कर देती है और प्रगति के अवसरों को कम कर देती है। आज के आधुनिक और वैश्विक युग में सफलता के लिए व्यापक दृष्टिकोण

सहनशीलता और सकारात्मक सोच आवश्यक है। इसलिए हमें संकीर्ण विचारों का त्याग कर उदार प्रगतिशील मानसिकता अपनानी चाहिए। दोस्तों, अब समय हुआ है आप विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी जो वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया, योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। प्रारंभ में सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों को फिल्म गोपी से।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?

0: लाख दो बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म परदेश से अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और साथियों को। अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए फिल्म नगीना से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम अपने सुनने वालों को बतलाना चाहेंगे 6:10 पर सुनिएगा फिल्मी देशभक्ति गाने। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल सुना जा सकता है 6:30 से। ये थे आज के आकर्षण।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 6 बजना चाहते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान

थे फिल्मी देशभक्ति गाने। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 6:20 होना चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले
1: कुछ ही देर में आप सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक, भाग 3, प्रस्तुति चारूबाला खरे। विशेष जयमाला में आज सैनिकों की शौर्य गाथा आप सुनेंगे शाम 7 बजे। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र दीवान रंजीत राय लेफ्टिनेंट कर्नल की शौर्य गाथा, प्रस्तुति है तेजश्री कामले। 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका कागज के जेवर। लेखक हैं अभिलाष, निर्देशन पुरुषोत्तम थारवेकर। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता भारत भूषण पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 220। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक, भाग 4, प्रस्तुति चारूबाला खरे। इस कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, लेखक जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक सुनवाएंगे। आज के फनकार आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसमें सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के आकर्षण है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। कथा सुधा में सुनिए आभूषण, भाग 3, सोशल मीडिया के वाद विवाद समय की बर्बादी, प्रादेशिक व्यंजन उत्तर प्रदेश का मक्खन मलइयो बेडमी पूड़ी, प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में सुनिए जीवन शैली और योग, योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छह गीत का समय रहेगा शाम 5 बजे। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। शाम 7 बजे जयमाला का प्रसारण होगा। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है तेरे घर के सामने। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए झलकी नीम हकीम, लेखक राजकुमार वाल्टर, निर्देशन गोपाल सक्सेना। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर। छह गीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे, आलेख और स्वर जयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

अभी आपने बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म में मधुश्री की आवाज़ को सुना। गीत मनोज मुंतशिर का था, संगीत MM करीम का। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज़ में केदारनाथ फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गज वाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोक वाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम विशेष जयमाला। आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा। उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन्य है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मे हैं।

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास। जब
0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियन।

0: और फिजियोस की पूरी फौज, तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते। और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हम गांव के हैं तूफान के, सुनकर

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 125 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए किए गए ट्रांसफर। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 120 से अधिक स्टार्टअप, प्रमुख निवेशक, प्रौद्योगिकी लीडर और दुनिया भर के शिक्षा संस्थान शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में स्टार्टअप क्रांति का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं और भारत लोकोन्मुखी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति देने के साथ ही भविष्य को आकार दे रही हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारत के नवाचार तंत्र और फ्रांस के प्रौद्योगिकी विस्तार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। आज भोपाल में समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया उसमें 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके बलबूते पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज्यादा हो गई जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 350 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही समस्त देवताओं का भुगतान और विशेष पैकेज के तहत भी इकाइयों को सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति 2025 और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भी हितलाभ प्रदान किए। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफ़ायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा,
4: आज लाडली बहनाओं की राशि डालते डालते लगभग 3 वर्ष हुए हैं। जून 2023 से प्रारंभ होने वाली योजना में हमारी सरकार के द्वारा आज 1,25,00,000 17,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,835 करोड़ रुपए की राशि उनके सिंगल क्लिक से उनके खाते में गई है। जून 2026 तक 59,588 और 93,00,000 की राशि, लगभग 60,000 करोड़ की राशि ये हमने लाडली बहनाओं के खाते में डाली, जो प्रति माह 1,500 रुपया उनके खाते में जा रहा है।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बेरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को मिट्टी और पौधों की वैज्ञानिक जाँच, आधुनिक खेती का प्रशिक्षण, नई तकनीकों की जानकारी और विशेषज्ञ सलाह एक ही स्थान पर मिलेंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रदेश के 19 जिलों की बाल कल्याण समिति CWC के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय आवासीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तंत्र, पुनर्वास और बाल कल्याण समितियों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर जानकारी दी। अब बात मौसम की। प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय रही तो 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का औपचारिक प्रवेश हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 जून को बैतूल प्रवास प्रस्तावित है। इसे देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा ड्रोन, UAV तथा अन्य उड़ने वाले उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले में अनुगुंज अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मंदसौर जिले में आयोजित जन कल्याण शिविरों में अब तक 3,841 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,582 पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। खंडवा जिले की जनपद पंचायत हरसू द्वारा आयोजित जन शिविर में जनजाति कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने सहभागिता कर ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में कल देर शाम नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में सिंदौवा गांव में आज 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राह भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिली।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: जी, इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर
1: जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं हैं।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
3: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, 1 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होंगे।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चों को नाकों चने चबवा दूंगा।
3: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
3: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते हैं सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
3: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा
1: हूँ। अरे ओ ओ हो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो हो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
3: अच्छा,
1: ए राम राम।
3: अच्छा राम राम भैया, राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
3: हाँ अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।
4: पिया मिला के पिया भर मा।

0: अरे भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू की खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ फुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
0: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
0: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गए, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
0: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच, अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान है, देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है मेरी लली। मैं तो

0: नाम भाग दे रखूं?
1: अरे बावली, मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
0: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
1: ओहो, तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
0: हाँ? जाओ, जाओ, जाओ।
2: मौसी,
3: मंगरू,
1: मंगरू। ओ, क्या बात है माधो?
3: अरे चौधरी जी आ गए। चौधरी जी?
1: हाँ। ओ, ओ, ओ, देख मैं तो, ओ, तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
3: अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता
1: हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ।
4: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
1: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त में आया। आइए आइए बिना जी।
4: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
1: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
4: मेरी रकम दे रहे हो ना
1: जी।
4: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
1: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे के वो रुपए तो सब
4: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
1: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
4: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवां आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
1: ओ चौधरी जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। धर्म से, धर्म से।
4: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
1: चौधरी जी, मालिक, मालिक।
4: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए।
4: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
1: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। पटवारी जी, पटवारी जी।
5: भैया, अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
4: जी 3,000।
5: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
4: जी जी, आप?
5: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
4: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
5: अच्छा भैया, जय राम जी।
1: पटवारी जी, आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
5: मंगरू, तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
1: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
5: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
1: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
5: और एक भूल तुमने और भी की
1: है?
5: जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
1: नहीं, वो क्या पटवारी जी है?
5: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
1: पर गलती उसी की पटवारी जी।
5: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो।
1: हाँ,
5: और हाँ, मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
1: हाँ, तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
5: देखो,
1: क्या करूँ,
5: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
1: लेकिन
5: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
1: ठीक, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
5: कौन से रुपए भाई?
1: वही वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
5: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
1: काहे?

0: कहती है कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
1: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो
0: अच्छा ये लो मंगल।
1: ये क्या कागज? ये कैसे कागज है? कैसे कागज है?
0: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
1: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
0: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
1: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
0: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
1: अच्छा, वो किस तरह?
0: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
1: अच्छा,
0: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
1: 11,000?
0: हाँ भाई,
1: सच सच कह रहे पटवारी जी?
0: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ और रुपया मिल जाने के बाद।
1: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
0: लेकिन अब फजूल खर्च मत करो।
1: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। हाँ, जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
0: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
2: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आगे हैं, जल्दी से चलिए।
1: आगे पंडित जी? हाँ, चलिए। आइए पटवारी जी, आइए आइए।
3: चलो चलो।

कागज के जेवर, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना।

0: महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए

0: भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
2: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिज़ाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा डिज़ाइन, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में

0: फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म का गाना। गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना, गीत इंदिवर ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।
2: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत करने

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारत के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ।

0: मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

0: सारा।
1: बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा, एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत।

0: भारत भूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

0: देखते रहे।
1: बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: बिन।
1: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
2: आज के फनकार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
2: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने, माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का। फिर क्यों उदास हो तुम?

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

0: सारी दुनिया के दांत मजबूत करे। हाँ
1: ये कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन
1: दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती इंडिया का गम एक्सपर्ट
3: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती वीको पाउडर वीको पेस्ट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी
4: याद रखिए मसूड़ों में जान तो दांतों की शान
3: वीको

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।
1: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
4: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
3: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the Inter-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation, and a rapidly expanding innovation ecosystem. The National Testing Agency or NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download the admit cards from NTA's official website neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. The Criminal Investigation Department or CID today interrogated Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee for over 9 hours for his alleged involvement in the signature forgery case of party MLAs. According to sources, the agency interrogated Trinamool Congress MLA Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee face-to-face at Bhavani Bhavan, the CID headquarters in Kolkata. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match in Edgbaston in Birmingham. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. Earlier, opting to bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्स और 102.9 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 11:10 हुए हमारा ये प्रसारण संपन्न होता है। कल सुबह 5:55 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं, शुभरात्रि जय हिंद।

टाइम चेक करें, 5:24, 32:33, 34:35 सेकेंड। माइक ओके।